मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026 प्रातः के 5:59 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से

0: इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं समूह स्वर में ये देशभक्तिपूर्ण रचना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कृष्ण भजन नितिन मुकेश के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के स्वर में ये कृष्ण भजन। आइए आपको सुनवाते हैं एक और कृष्ण भजन पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में ये भजन। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में चारों धाम की महिमा।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में चारों धाम की महिमा। इसके साथ ही वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। विषय होगा नींबू वर्गीय फल पौधों के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण। 6:40 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान की 408

0: कड़ी। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाटकर और साथियों का। संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। 6:50 पर होगा चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे काव्य पाठ। कवि होंगे प्रमोद गुप्ता मृदुल। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30, शाम 5:30 और रात 8:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक गीत गीता का 6वां भाग, शीर्षक होगा ध्यान योग। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम के कलाकार होंगे गणेश प्रताप यादव। 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सहयोग भूपेंद्र वर्मा का, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय, सहयोग राजेंद्र हेरवार का, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज हम अनुप्रसारित करेंगे दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिलाएं सुनेंगी महिला कार्यक्रम महिला सभा। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 फिल्म संगीत। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम। रात 8:00 सुर्खियों में। और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही आज हम अनुप्रसारित करेंगे भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा जल जीवन मिशन। दिन में 2:30 पर बच्चे सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कहानी एक पेड़ माँ के नाम। कहानीकार होंगे मिथुन भारती। साथ ही होगी रोचक जानकारी। शाम 6:00 भजन संध्या के कलाकार होंगे उदित नारायण। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे ब्रज गोपाल गुप्ता। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 6। इसके अलावा वार्ता जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव, वार्ताकार होंगे सौरभ भारती। और आज की सीख का विषय होगा जैसी करनी उसे भरनी वैसे ही पार उतरनी। दिल्ली से आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कोप। और दिल्ली से ही आज हम अनुप्रसारित करेंगे रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती किसानी। विषय है नींबू वर्गीय फल पौधों के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण।
1: पंचो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं नींबू वर्गी फसलन के बारे में। तो देखो भैया अबे चल रही है गर्मी और गर्मियन में जैसे ही नींबू को नाव लियो तो अपनी जीभ में आउत है पानी, और खास तौर से गर्मियन में पानी की भी जरूरत होते है। तो नींबू वर्गी जो फसलें हैं पौधा हैं उनमें ये बेरा कौन प्रकार के कीट अपनी फसलन पे प्रकोप करत है उके बारे में हम आज अपन को बताएं। तो इनमें भैया एक कीट होते है उको नाम है स्ट्रसिल्टा कीट। ई कीट के जो वयस्क प्रौढ़ और छोटे बच्चा होते हैं वे नींबू की पत्तियां खा और जो मुलायम उकी टहनी होती है शाखाएं भैया उके अलावा फूलन को रस चूस के पौधा का बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देते हैं। ई को प्रकोप ई दिनन पे ज्यादातर देखो जाते हैं। ई कीट के जो बच्चा होते हैं भैया वे शहद जैसो एक लिप लिपो तरल पदार्थ से भी निकालत है। इसे कहा होता की जो काली काली फफूंदी होत ना वह अपने पौधा के पत्तन खा फफूंदी के रूप में ढक लेते हैं, जिसे जो पत्ता है वे अपनी जो दैनिक क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है भोजन बनावे को काम है वो जो है बंद कर देते हैं। और जब भोजन बनावे को काम ही बंद हो जाए तो पौधा के पत्ता पीले पड़ जाए। तो ई की रोकथाम के लाने अपन का करने हैं कि 0.025% पैराथियन एक दवाई आउट है। कौन सी भैया? 0.025% पैराथियन। अगर जो दवाई ना मिले तो 0.05% मेलाथियन दवाई को घोल बना के अपन का अपने पौधा पे जो है छिड़काव कर

0: देने हैं। एक और कीट होते भैया उ बोलत है लीफ माइनर कीट, जो भी भैया ई बेरा नुकसान पहुंचाऊ थे, तो ई कीट के जो अंडा होते हैं वे फटवे के बाद उनकी छोटी छोटी सी सुनिया निकल जाऊती में, और ये जो छोटी छोटी सुनी है पौधा की जो छोटी पतली कोमल पत्ती होती है उनमें सुरंग बना लेती, फिर पत्तियों को रस चूसन लगती, और फिर उनमें जो बिया उको जो हरो हरो पदार्थ है हीमोग्लोबिन उनके तत्व है उनका जो खावो शुरू कर देती, जिससे कि पौधा का नुकसान होते है। तो ई की रोकथाम अगर ऐसे लक्षण पुनः दिखाई दे रहे हैं और लीफ माइनर कीट को प्रकोप अपने पौधा पे है, तो पुनः ई की रोकथाम के लाने 0.025% पैराथियन या 0.1% BSC को छिड़काव पुनः कर देने हैं। तो जब अपन देखें कि अपने नींबू वर्गीय फसलन में लीफ माइनर कीट का प्रकोप है, तो अपन 0.1% BHC पाउडर को भड़काव जरूर करें। एक भैया होते ही में सफेद मक्खी, तो भैया ई कीट के जो बच्चा और प्रौढ़ होते हैं वे दो ही जो है नींबू वर्गीय जो पौधे हैं जो फसलें हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह से इनको रस चूसबो शुरू कर देते हैं। इमें भैया का होते है कि जो पत्ती होती ना पीरी पीरी पर के उसे ही सिकुड़ सन सी लगती है और फिर गिरन लगती, तो जब देखें कि अगर पीली पत्ती पर रही और गिर रही झर रही तो ऊके लाने अपन एक ही रोकथाम जरूर करने हैं। और उमे भैया का करने हैं छोटी सी अच्छी सी दवाई है 250 ग्राम गुड़ लेने अपन का लेने एक पाव गुड़ और 5 किलोग्राम पानी में उखा घोल के अच्छी तरह से और उमे एक दवाई आउत है उकी कछु बूंदे अपन छिड़का की सुई में ला लेने और 7 ग्राम जो दवाई है बकहाउत लेड आर्सेनेट है ना तो ईखा मिला के ईको एक जहरीलो चारो जो है खुली बोतल में अपनी बगैचा में या जहां निबुआ को पेड़ लगो है उते पे टांग देने हैं लटका देने भैया। तो जैसे ही अपन जो पूरा एक बोतल में भर के लटका है तो ऊखा उनका ऐसे गुड़ है कि नहीं और जहर भी मिलो उमे तो ये सब चीजें जब मक्खी आके खेहे और भैया मर जाए। तो ई प्रकार से अगर कहूं अपन पहचाने के सफेद मक्खी को प्रकोप है तो उमे ई दवाई का उपयोग जरूर करें। और अगर कहूं अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान रख के नींबू वर्गीय फसलन के लाने इन कीटन के प्रकोप खा समझ के बताई भाई दवाइयन का उपयोग करो तो निश्चित है कि अपन खा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी, विषय था नींबू वर्गीय फल पौधों के प्रमुख कीट एवं नियंत्रण। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की 408वीं कड़ी, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5

प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्रीराम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की 408वीं कड़ी। गायक अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: चिंता सभी को होती है, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसे चिंता न घेरती हो। कोई कम चिंता करता है तो कोई अधिक। जब हम खाली बैठे होते हैं तो दिमाग में तरह तरह की आशंकाएं आ जाती हैं, जो धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती हैं। जब हमें चिंता घेरती है तो हम उससे निकलने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा करके और भी अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक उपद्रवों को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि केवल विचार करने मात्र से चिंता का समाधान नहीं हो पाता। विचार करके केवल चिंता का निवारण का उपाय खोजा जा सकता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता। चिंता एक तरह से मन की कल्पना है जो वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं होती। इसीलिए इसे दूर करने के लिए सजग होने, कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। बिना कुछ किए केवल सोचने मात्र से चिंता कम होने की बजाय बढ़ जाती है। जब हम अपने वर्तमान में होते हुए भी भूत या भविष्य में खो जाते हैं तब चिंता हमें घेर लेती है। इसीलिए यदि हम अपने वर्तमान में रहते हुए सजग रह सकें तो चिंताएं आएंगी जरूर, लेकिन हम पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाएंगी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहते थे, काम करो, चिंता अपने आप ही नहीं आएगी। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय 18 घंटे काम करते थे और अक्सर कहते थे, मेरे पास इतना काम है कि मुझे चिंता करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो सदा अपने कार्य में संलग्न रहते हैं चिंता भी उनसे दूर ही रहना पसंद करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था, खाली समय में अपने सुख दुख पर विचार करना ही दुखी होने का कारण है। इसीलिए व्यर्थ बातें ना कीजिए और ना ही उन्हें सोचिए, तब आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। ये एक तरह की विडंबना ही है कि जो काम करने से बचने की कोशिश करते हैं उन्हें ये भ्रम रहता है कि वे थकान से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से ज्यादा थकान होती है।

बर्नार्ड शाह का कहना है कि चिंताएं परेशान ना करें, इसके लिए जरूरी है कि काम को अपने अस्तित्व से जुड़ा माने और उसके परिणामों की ओर निरपेक्ष रहे। दरअसल चिंताएं हमारी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। हमारे दिमाग में चिंताओं के लिए खास जगह होती है और हमें ही उनसे निपटना होता है। ये बात सही है कि चिंताएं हमारे अंग की तरह हैं, इसीलिए ये हमारे सामने आ जाती हैं। हमारी सभी चिंताएं खराब नहीं होती, ये हमें आने वाले खतरों के प्रति भी आगाह करती हैं, हमें जागरूक बनाती हैं। जब हम

0: हमारे सामने आ जाती हैं। हमारी सभी चिंताएं खराब नहीं होती, ये हमें आने वाले खतरों के प्रति भी आगाह करती हैं, हमें जागरूक बनाती हैं। जब हम चिंतित होते हैं तो उससे निकलना भी चाहते हैं, इससे हम कुछ नया और अलग सोच पाते हैं। संघर्षों के पथ से निकलकर ही मनुष्य सफल बन पाता है। यदि हमें कोई चिंता ही न हो तो शायद ही हम आगे बढ़ पाएं। इसीलिए चिंताएं यदि हमें आगे ले जा रही हैं तो इसका कुछ अच्छा असर हमारे ऊपर होता है। दिक्कत या परेशानी तो तब होती है जब चिंताएं हमें रोक लेती हैं और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती हैं, हमें एकाग्र नहीं होने देती। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो चिंताएं तो होंगी ही, चिंताओं के बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी उचित नहीं है कि हम केवल चिंताओं में डूब रहें और कोई सक्रिय कार्य ना करें। चिंता चिता की तरह होती है जो मनुष्य को अंदर से जलाकर खाक कर सकती है। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि चिंता मनुष्य को वैसे ही खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा और वृक्ष को दीमक। बहुत चिंता करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में चिंता करने के सिवाय और कुछ सार्थक नहीं कर पाते और चिंता से अपनी चिता की ओर बढ़ते हैं। बहुत अधिक चिंता बहुत भयानक होती है और ये मनुष्य का सर्वनाश कर सकती है। जिस प्रकार एक मजबूत और प्राचीन वृक्ष अनेक प्रकार के प्राकृतिक संकट झेलता हुआ अपनी मजबूत जड़ों के सहारे अधिक खड़ा रहता है, परंतु छोटी सी दीमक धीरे धीरे उसकी जड़ों को खोखला करती हुई एक दिन उसे धराशायी कर देती है। उसी तरह चिंता की दीमक भी एक सुखी समृद्ध और ताकतवर व्यक्ति को चट कर जाती है। थोड़ी चिंता व्यक्ति को सजग बनाती है तो अत्यधिक चिंता दीमक की तरह उसे खोखला बनाकर नष्ट भी कर देती है। इसलिए इस दीमक रूपी चिंता से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि चिंता अत्यधिक बढ़ रही हो तो सजग हो जाना चाहिए, अपने मन को कार्यों में लगाना चाहिए और चिंता को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। स्वयं को सदा सार्थक कार्यों में संलग्न रखना, मन को अच्छे विचारों से ओतप्रोत रखना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे ये जीवन पथ प्रशस्त किया जा सकता है और मन को चिंता मुक्त किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्।

0: वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्त दिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्ध त्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with the U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues including regional and global peace and security. U.S. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts in West Asia through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. The government has published draft rules under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme, Swasthya Sathi, will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के

0: कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
1: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी सीधी की ओर से परिजनों को 20,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल

प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हिंदी महक के अंतर्गत काव्य पाठ। कवि हैं प्रमोद गुप्ता मृदुल।
1: सर्वप्रथम सरस्वती वंदना। हंस

वीणावादिनी। और माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि का खगा गा कछु न जानू क्षेत्र ज्ञान तक सिखा दो ओ का खगा गा कछु न जानू।

के नाचे हम मैया के आंगन, मौज मजा बचपन की मस्ती परमानंद दिलाती, भेद भाव को किसने जाना मिलना गले सिखाती। होली के दिन याद है

के नाचे हम मैया के आंगन। रूठा रूठी किट्टा किट्टी, बचपन की यादें हैं। रूठा रूठी किट्टा किट्टी।

गाते झूम के नाचे हम मैया के आंगन। और एक और रचना इसी क्रम में दहेज प्रथा पर रचना है, जो कि सामाजिक बुराई है, उस पर बेटी

करो और बेटी के लिए क्या क्या करें, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ घर के सारे काम सिखाओ, मर्यादा को पाठ पढ़ाओ खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ घर के सारे काम सिखाओ, मर्यादा को पाठ पढ़ाओ।

करो। और आखिरी बंद है, को करता है मजदूरी, कोई किसी के पास इतनी धन दौलत नहीं होती है, जब दहेज प्रथा की बात आती है उस स्थिति में, कोई करता है मजदूरी, गरीब पिता की है मजबूरी, कैसे मांग करे वो पूरी, हाँ हाँ कैसे मांग करे वो पूरी।

0: बचाऊं ने।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत काव्य पाठ, कवि थे प्रमोद गुप्ता मृदुल। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में नया खून फिल्म का गीत। गीतकार है इंदिवर और संगीतकार है उषा खन्ना।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को फिल्म थी नया खून। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे उषा खन्ना। आइए अब आपको सुनवाते हैं उल्टा सीधा फिल्म में किशोर कुमार, लता मंगेशकर व साथियों की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राजेश रोशन। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं मरते दम तक फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को फिल्म थी मरते दम तक। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आइए अब आपको सुनवाते हैं कानून की आवाज फिल्म का गीत। आवाज आशा भोसले व साथियों की है, शब्द रचना निदा फाजले की और संगीत निर्देशन जगजीत सिंह का है। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यूनिंग करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आशा भोसले व साथियों के गाए कानून की आवाज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा

0: की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग

0: पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का।

0: रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100 meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region. Region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties,

श्रोताओं आपको याद दिला दें, अब से कुछ देर बाद सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का भाग 6, शीर्षक था ध्यान योग। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक रंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं गणेश प्रसाद यादव। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं गणेश प्रसाद यादव के स्वर में ये वंदना। ढोलक पर हैं रघुराज सिंह और बेंजो पर संगत कर रहे हैं जब्बार खान।

0: अभी आप सुन रहे थे गणेश प्रताप यादव के स्वर में ये वंदना। ढोलक पर थे रघुराज सिंह और बैंजो पर संगत कर रहे थे जब्बार खान। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मंदिर की माता।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं गणेश प्रताप यादव के स्वर में ये लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक शैली बद्ध बुंदेली लोकगीत गणेश प्रताप यादव से। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं चौकड़िया, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

अभी आप सुन रहे थे गणेश प्रताप यादव के सुर में ये चौकड़िया। ढोलक पर थे रघुराज सिंह और बैंजो पर संगत कर रहे थे जब्बार खान। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ये हास्य बुंदेली लोकगीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे ये हास्य बुंदेली लोकगीत। कलाकार थे गणेश प्रताप यादव। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ये भजन।
1: अरे के लौट बहुर ने आवे जो मन, अरे लौट बहुर ने

अभी आप सुन रहे थे गणेश प्रताप यादव के स्वर में ये भजन। कार्यक्रम के अंत में इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ढिमरियाई। ढोलक पर रघुराज सिंह, बेंजो पर जब्बार खान।

गणेश प्रताप यादव के गाए इस ढिमिरियाई के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भूपेंद्र कुमार वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 2415888 यानी कि 241588 और दूसरा नंबर है 298029 यानी कि 298029। छतरपुर से बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड है 07682 यानी कि 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इससे बीच कोई श्रोता लाइन पर है, आइए जानते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, फरमाइश सर, नमस्कार।
0: जी हाँ, नमस्कार
1: जी सर। हम ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं सर।
0: जी मेहरबान सिंह नागल जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर बढ़िया है।
0: क्या करते हैं?
1: और बस सर थोड़ी खेतीबाड़ी का काम है, खेतीबाड़ी करते हैं और पालन भी करें सर, और आकाशवाणी का भरपूर आनंद भी लेते हैं सर जी। हमें लगता है कि सर भूपेंद्र सर बोल रहे हैं सर जी आप।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं भूपेंद्र ही बात कर रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल सर, काफी दिनों से तरस रहे थे लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है सर आपसे बात हो गई है तो बेहद अच्छा लग रहा है सर जी।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से बात करते हुए। और बताइए, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो किस प्रकार से अपना ख्याल रखते हैं?
1: जी बिल्कुल सर, गर्मी का माहौल तो बहुत अधिक से अधिक ज्यादा ही चल रहा है, तो हम तो जो करते हैं कि आराम से सुबह घूमे आते और बस अपने घर में ही हैं।
0: जो गर्मियों के दिनों में अपने खान पान का क्या ध्यान रखते हैं आप?
1: गर्मी में खान पान अपन को ऐसा रखने चाहिए कि अपन को फल फलूट खाने चाहिए,
0: अधिक से अधिक मात्रा में पानी भी पीना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, अधिक से अधिक पानी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए सर जी।
0: और दही छाछ वगैरह भी पीना चाहिए, आम का पना भी पीना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जे अगर यही चीज इनका बिल्कुल हम ख्याल रखते सर, अब जो आप बता रहे हैं आम का जो पना है और मान लो जो छाछ वगैरह जे तो भरपूर खाने चाहिए सर जी अपन को।
0: जी बताएं, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर गीत के बोल हैं, जब जब तेरी नजर से मिलती है मेरी नजर कुछ कुछ होता है सर।
0: और क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बस ये कहना चाहेंगे सर, आकाशवाणी की प्रस्तुति शानदार चल रही है और जो सर आप कार्यक्रमों को देते हैं बड़ी बेहतरीन मेहनत से कार्यक्रम को सर आप पेश करते हैं तो हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनते हैं सर जी।
0: जी हम सभी लोगों की कोशिश ये रहती है हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम अच्छे लगे, और आज जब आप लोगों को उत्साह वर्धन मिलता है तो हम लोगों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है।
1: जी जी बिल्कुल सर, बड़े आप बड़े बेहतरीन परिस्थिति में कार्यक्रम देते हैं तो हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक आनंद लेते हैं सर।
0: जी जी, कार्यक्रम में आपने फोन लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: जी सर धन्यवाद, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरे गांव का नाम है बद्रीपार, डिस्ट्रिक्ट 1 कचा, आसाम से। पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़ी कौन सी है? मुस्कुराहट और आक्सम, वो दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं वो पर सबसे खूबसूरत होता है, सबसे प्यारा होता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी लाइनें बोली हैं। मुस्कुराहट ही सबसे अच्छी चीज होती है। हम दूसरे के चेहरों पर यदि मुस्कुराहट बांट सकें तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज दे रहे हैं आप।
1: मौसम कैसा है?
0: हमारे यहाँ का मौसम काफी अभी गर्म है और तीखे तेवर है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी गर्मी है और सुबह तो 5 से बारिश हुई बहुत ही।
0: तो रेडियो सुनने की प्रेरणा कैसे मिली आपको?
1: मैं तो मोबाइल ऐप में आपको आकाशवाणी तकरापुर को मैं सुनता हूँ मोबाइल ऐप में, बहुत ही बढ़िया लगता है प्रोग्राम।
0: जी जी, तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मूवी का नाम है चाहत, गाने का बोल है दिल की तन्हाई आवास बना लेते है, ये गाना गाया है कुमार सानू ने। तो मैं गाना कुछ मैं परिवार में सुनेगा, पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी है शिल्पी दास और बड़े भैया जोजीत दास और आपके लिए सर गाना भी, और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को सर डेडिकेट करूंगा। पहले मेरा आसाम तिरुभूमि जलाशय है, मेरे बड़े भाई है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है श्वेताबा भट्टाचार्य जी, और हैलाकंदी से मेरा बहन है लवली दास और बबली दास और रामचो भाई और मेरा बप्पन दादा है, प्रेमजी दादा है और दादा है जवाहरलाल बर्मन, और अभी जो आकाशवाणी छतरपुर में सुनते सारे श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: आपने कार्यक्रम में फोन लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ। सर
0: वहाँ का मौसम कैसा है?
1: सर मौसम बढ़िया है यहाँ।
0: और क्या करते हैं?
1: बस सर हम खेती बाड़ी करते हैं, इस टाइम खेत खाली है तो डेढ़ महीना बाद फसल लगाएंगे।
0: तो रेडियो सुनने का समय मिल जाता है आप?
1: जी हम खेती बाड़ी करते हैं तो रेडियो सुनते रहते हैं, क्योंकि रेडियो से जानकारी हमें ज्यादा कर खेती से वो जानकारी मिलती है तो हम उसका भी लाभ उठाते हैं।
0: खेती किसानी से जुड़ी काफी जानकारी प्राप्त होती रहती है रेडियो से?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: आकाशवाणी की जैसे हालो फरमाइश हो गया और खेती बाड़ी हो गया और जो आप फरमाइश करते हो तो वो आपको पसंद आती है, जो दूर दूर से श्रोता जुड़ते हैं उनकी आवाज सुनने को मिलती है, जब कोई मैसेज वाला कार्यक्रम आता है तो उनके भी नाम सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है सर कार्यक्रम। हाँ भाई जी सुनते रहते हैं रेडियो की मदद।
0: तो आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: मैं सर रेडियो 2011 से सुन रहा हूँ रेडियो, अच्छा मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं सर, क्योंकि आपका कार्यक्रम इतने दूर था छतरपुर और राजस्थान। तो
0: जी जी हाँ, आप काफी दूर से कॉल कर रहे हैं हमको, बताइए आज

0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर फिल्म का नाम है अनाड़ी, नई वाली है, और उसमें गाने के बोल है, सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकारे।
0: कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद आपका।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश से
0: जी, आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम प्रपा पोस्ट कलानी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजाराम अहरवा बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: सर अभी तो गर्मियों में छुट्टी है, कोचिंग वोचिंग पढ़ाते हैं अभी तो।
0: जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो उन पर आप कैसा ध्यान देते हैं?
1: उनको अलग से यानी के समय देते हैं सर।
0: यानी कि अलग से उनकी क्लास लगाते हैं और बताते होंगे?
1: जी जी सर।
0: और आपके क्या क्या शौक हैं
1: सर? यानी कि हमको सबसे ज्यादा ये आकाशवाणी सुनना और खेलना।
0: आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं तो कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
1: सभी कार्यक्रम आते हैं हमको, लोकमंजरी है, हेलो फरमाइश है, हम तो यानी 2000 से सुन रहे हैं।
0: सन 2000 से आप रेडियो सुन रहे हैं लगातार, तो रेडियो के बारे में क्या कहेंगे आप?
1: सर सबसे अच्छा साधन है, इससे मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धक यानी बातें भी बताते हैं इसमें सर।
0: ज्ञान और सूचना का मनोरंजन का साधन ही है।
1: जी हाँ, इससे बढ़िया यानी पढ़ाई भी चलती रहती है और बढ़िया मनोरंजन भी होता रहता है।
0: तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: नदिया के पार।
0: नदिया के पार का कौन सा गीत?
1: कौन दिशा में लेके चला है बटुरिया सर, मेरा पहली बार लगा है इसमें फोन।
0: आपका पहली बार फोन लगा है, ये तो खुश किस्मत की बात है। और आपको सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार तो आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी।
0: जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी जी एक जोक है मैं थोड़ा सुना सकता हूँ?
0: हाँ सुनाइए।
1: एक जमाना था जब अनपढ़ लोगों को अंगूठा टेक कहा जाता था और कह दिया जाता था चलो लगा लो लाइन। लेकिन सर जी जमाना बदल गया, अब पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल जमाने में अंगूठा टेक बना दिया गया और कह दिया गया चलो हो जाओ ऑनलाइन, चलो हो जाओ ऑनलाइन।
0: चलिए बहुत बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप?
1: आपका नाम जानना चाहूंगा मैं।
0: मैं भूपेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ
1: जी। सर जी को नमस्कार और चित्रकूट धाम से सत सत राम राम भेज रहा हूँ सर जी को।
0: जी राम राम बिल्कुल। और क्या करते हैं आप?
1: इस समय कृषक हूँ, टोटल कृषक हूँ। पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में 12 से 14 साल जो है शिक्षक रहा हूँ।
0: जी जी जी। तो आप रेडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जन्म मेरा हुआ उसके पहले से, हमारे यहाँ सन 47 में, यानी आपके जो छतरपुर का जो है की स्थापना भी नहीं हुई थी, सन 47 से मेरे यहाँ रेडियो था और आज भी रेडियो बज रहा है। ये दूसरा रेडियो है जमाने का और 90 वर्ष पूरे हो गए। रेडियो मेरे घर में कंटिन्यू चलता रहता है, मैं सुनू या ना सुनू मेरे घर के बच्चे सुनते।

0: रहते हैं।
1: क्या बात है, ये जो विरासत है आप पीढ़ी दर देते जा रहे हैं, आपको ये विरासत में मिला रेडियो।
0: और सर जी ये भी बता दो, जब ये 7 अगस्त 1971 को आपका जो है स्थापना हुई आज छतरपुर,
1: मैं बताना चाहूंगा 7 अगस्त 1976 को स्थापना हुई थी आकाशवाणी छतरपुर की।
0: अच्छा 76 को हुई थी, चलो ठीक है मिस्टेक है, लेकिन मेरा जन्म 71 का है, 23 सितंबर 71 का
1: जी।
0: तो जिस समय हमारे पास रेडियो आया था सर, उस समय 7 या 8 जो है चैनल लखनऊ की स्थापना हो चुकी थी, 7-8 चैनल बताते हैं लखनऊ दिल्ली।

0: से सुबह वाले भी कार्यक्रम 7:30 से भी जो है, और मैं अगर फोन भी इसमें लगाता हूँ जो है आपके लोकगीत के कार्यक्रम में।
1: जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: मुझे गाना सुना दीजिए, चली आई मैं अकेली बीकानेर से, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिन अलबेली।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
0: जी सर जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: मेरा नाम है

0: हेलो फरमाइश, आप
1: मैं सीके कुशवाहा बोल रहा हूँ बरही से
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं घर पे हैं।
0: तो अब इस समय खेती बाड़ी का काम तो पूरा हो चुका होगा?
1: जी साहब।
0: तो खाली समय पर आप क्या करते हैं?
1: खाली समय पर हम भैंस को चराते रहते हैं सुबह शाम।
0: और रेडियो कब कब सुन लेते हैं आप?
1: रेडियो का मैं मित्र हूँ, कम से 1999 का मैं मित्र हूँ, लेकिन मेरा फोन कभी नहीं लगता है।
0: लेकिन आज तो लग गया।
1: आज लग गया, मैं प्रयास करता रहा बहुत देर से।
0: क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
1: हार जी सर।
0: और आपने कोशिश की, आज आपका कॉल भी लग गया। आप सन 1999 से लगातार रेडियो सुनते आ रहे हैं?
1: हाँ जी सर, अभी भी रेडियो में रखा हुआ हूँ साथ में।
0: आपका रेडियो साथी है?
1: हाँ हाँ, पक्का साथी है।
0: कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: गीत हमको बहुत पसंद आते हैं, शाम के लोकगीत भी सुनते हैं और हेलो फरमाइश में गाना सुनते रहते हैं।
0: जी जी।
1: पहले रविवार को आता था 1:10 से, अब आती है आपको 9:30 से आती है 10:30 तक।
0: जी, आप तो हमारे काफी पुराने शो

0: होता है, क्योंकि पहले समय था 1:10 का, वो वर्तमान का समय है 9:30
1: से। वर्तमान का समय है, वो समय मेरी शादी हुई थी 2003 में।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत पुराना साथी हूँ रेडियो का, अभी भी रेडियो रखता हूँ साथ में।
0: हमें जानकर काफी खुशी होती है, हमारे जितने श्रोता मित्रों का कॉल आ रहा है तो काफी समय से रेडियो से जुड़े हैं।
1: जी साहब,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज हमको दलाल फिल्म का गाना सुनना है, चढ़ गया रे ऊपर अटक गया बल्लो होटल कबूतर रे।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो सोता संघ बस स्टैंड बंडा विलेज से लक्ष्मण को चाय वाले बात कर रहा। चाय भी लो सर।
0: जी जी धन्यवाद। और कैसे हैं लक्ष्मण जी आप?
1: अच्छे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे। और क्या,
0: तो गर्मियों के मौसम में चाय किस प्रकार से पी जा रही है?
1: चाय तो बिकती रहती है, चाहे ठंड में ऐसा रहता है थोड़ी ज्यादा बिक जाती है मगर बिकती रहती है।
0: जी जी जी जी।
1: चाय कम नहीं होती है, गर्मी को गर्मी मारती है चाय।
0: जी जी जी जी। रेडियो किस प्रकार से आपका साथी है?
1: रेडियो तो हमारे बहुत 3-4 वर्ष हो गए हैं।

0: और सुनते।
1: तो आप रेडियो से कब से जुड़े हैं?
0: बस हम 30 वर्ष हो गए हैं जब से जुड़े हैं, तो जुड़े से अभी हर आकाशवाणी में फोन भी लगाते हैं
1: जी,
0: और पत्र भी डालते, अभी आपके पास पत्र पहुंच गए होंगे
1: जी। तो रेडियो सुनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
0: वो तो हम ऐसा ही रेडियो का शौक था, तो सुनते सुनते हमने ये नाम कैसे आते होंगे और ये कैसे बात करते होंगे, तो ऐसे ऐसे सीख गए हम, पत्र भी लिखने लगे। बहुत आकाशवाणी 100 आकाशवाणी में पत्र भी डाल चुके हैं और फोन भी लगा चुके।
1: देखिए रेडियो सुनने से कितनी चीजें हमें सीखने को मिल जाती है। आप पत्र लिखना भी सीख गए, पत्र भी डालते हैं कार्यक्रमों में,
0: और आप लोगों से बात भी करना, जान पड़े तो नहीं है मगर बात करना भी सीख गए, सब सीख गए।
1: देखिए रेडियो हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें सिखा देता है।
0: हाँ हाँ हाँ, उनसे कैसा बोलना पड़ता है और हर जानकारी घर बैठे मिल जाए।
1: जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से खेती किसानी, ग्राम सभा और नारी जगत कार्यक्रम समय समय पर चर्चाएं परिचर्चाएं वार्ताएं आती रहती हैं। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: आज दाता पिक्चर का सुनूंगा ना, दिल के टुकड़े करके मुस्कुराते चलती।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत
0: सर। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी छतरपुर।
0: जी हाँ, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मानवर शादर सुप्रीम, प्यार है, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? मौसम कैसा है? वातावरण कैसा है?
0: जी मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म तेवर का है।
1: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है लू चलने का। जबरदस्त गर्मी रहेगी, तापमान 45-46 डिग्री के आसपास रहेगा। मथुरा वृंदावन में भी चमचमाती हुई धूप है और गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में घर के अंदर रहते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना पसंद करता हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। जब कभी कॉल लगता है, आपसे वार्तालाप होती है, बेहद बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है।
0: जी तो आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: मानव छतरपुर से मैं प्राय हेलो फरमाइश, हेलो फ्रेंड, रमतुला इत्यादि कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और पसंद करता हूँ।
0: जी जी, तो आप मथुरा से फोन लगा रहे हैं हमको, तो मथुरा में इस समय क्या विशेष है?
1: देश विदेश के लाखों लाख के पर्यटक श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही है, इस पर्यटक कम आ रहे हैं।
0: जी जी, तो गर्मी के दिनों में किस प्रकार से अपना ख्याल रखते हैं?
1: मानवर, घर के अंदर रहता हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, भरपूर मनोरंजन होता है। सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आते हैं, इनको सुनते रहता हूँ और अच्छा लगता है कार्यक्रम सुनना।
0: जी जी जी, रेडियो से आप कब से जुड़े हुए हैं?
1: मानवर, मैं 1995 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो रेडियो मैं पहले भी सुनता था 1970 से ही, लेकिन क्या है कि 1995 से ज्यादा इसलिए जुड़ गया कि एक सड़क दुर्घटना में हादसा हुआ और मेरी दोनों आंखें खराब हो गईं, जिसकी वजह से मेरा एक अच्छा साथी रेडियो बन गया। तब से मैं रेडियो को ही अपना साथी बनाकर रखता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम सुनते रहता हूँ।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, रेडियो हमारा सच्चा साथी है।
1: जी
0: जी, बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, बहुत ही खूबसूरत सुरीला गीत है, कुमार सानू साहब और अलका याग्निक ने गाया है, फिल्म का नाम है कुली नंबर वन।
0: जी, कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं कुली नंबर वन फिल्म का ये गीत।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं से करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हाँ हेलो फरमाइश
0: जी, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: भाईजान नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी इलियास पाशा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं सर। आज मैंने कम से कम 2 महीने के बाद फोन लगाया सर।
0: क्या बात है, आपने हमारे नए श्रोता मित्रों को मौका दिया।
1: जी जी जी, बस अपनी दुकान पर बैठे हैं, चावलों की दुकान है सर। आपके प्रोग्राम सुनते हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं आपके प्रोग्राम सर।
0: कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: ये हेलो फरमाइश है और वो गीतों के ऊपर जो कार्यक्रम आ रहा है, और हेलो फ्रेंड्स है, और भी जितने कार्यक्रम है सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आपके सर। आपका जो पेश करने का अंदाज है बहुत बेहतरीन है, आप लोगों की आवाज बहुत मीठी और मधुर लगती है।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं
1: सर? मैं आपके जो प्रोग्राम सुन रहा हूँ बस 6 महीने से सुन रहा हूँ। मैंने उस पर यूट्यूब पर आपका प्रोग्राम सुना था तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं तभी आपसे जुड़ गया हूँ और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन रहा हूँ सर।
0: जी जी जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मुझे सुनवा देना उस राजा मूवी का।
0: राजा मूवी का कौन सा गीत?
1: किसी दिन बनूंगा मैं, गीत सुनवा देना।
0: किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी।
1: जी जी जी जी।
0: तो आपके घर में कौन कौन है?
1: हमारी मम्मी है, हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटिया, हमारी 2 बेटे हैं, हमारी मिसेज हैं, 6 जनों का परिवार है बस।
0: आप कितने समय से अपना जो घर की दुकान पर काम कर रहे हैं?
1: ये हमारी 1 साल हो गई दुकान को, और हम इसके साथ में खेतीबाड़ी भी करते हैं। कुछ समय के लिए हमारा बेटा बैठता है जब हमें खेत का काम होता है, बाकी मैं बैठता हूँ सर।
0: जी जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर यह गीत। कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: आदरणीय भूपेंद्र भैया को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं हालचाल आपके?
1: बहुत बढ़िया है भैया, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन।
0: जी और बताइए दीपक जी, रेडियो के बारे में आप?
1: भैया रेडियो के अगर बारे में कहा जाए तो रेडियो की तो अनगिनत कहानियां हैं, किस्से हैं और यादें हैं। और रेडियो एक ऐसा संसाधन है, जब कोई संसाधन नहीं थे, ना टीवी थे, ना मोबाइल थे, ना मात्र एक रेडियो था, तो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का साधन था, जिससे हमारे पूर्वजों ने आरंभ किया और आज हम लोग भी सुन रहे हैं। तो रेडियो से बहुत अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है और रेडियो ने इतना कुछ दिया है, शायद कोई और संस्था या कोई चीज नहीं दे पाती। बहुत अच्छे अच्छे मित्र दिए, अच्छा ज्ञान दिया, तो रेडियो के बारे में जितना भी कहेंगे वो कम होगा।
0: लगभग आप कितने वर्षों से रेडियो सुनते आ रहे हैं?
1: सुनने की अगर भैया कहा जाए तो मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, और सक्रिय रूप से श्रोता के रूप में मैं आया हूँ 2008।
0: जी जी, इस समय आकाशवाणी की 90 वर्ष और आकाशवाणी छतरपुर के 50वां वर्ष मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: पहले तो मैं 50 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, और हमारी आकाशवाणी नियंत्रण हम सभी श्रोताओं को एक से बढ़कर एक कार्यक्रम देती चली आ रही है आज भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सफलतापूर्वक हमारे आकाशवाणी छतरपुर ने अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जो हम गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए, और रेडियो ने 90 वर्ष लिए हैं, ये भी हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
0: जी जी जी बिल्कुल, और हमारे आप काफी पुराने श्रोता हैं, रेडियो से जुड़े रहते हैं और कार्यक्रमों में सहभागिता भी करते रहते हैं।
1: जी जी भैया,
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मैं सुनना चाहूंगा फिल्म है मैं तेरा आशिक का गीत के बोल है दुपट्टा तेरा काले रंग का।
0: तो आप रेडियो के बारे में कोई और मैसेज देना चाहते हैं?
1: रेडियो के बारे में मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को और हमारे जो युवा साथी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि रेडियो हमेशा सुनते रहें। रेडियो से हमें 100% सारी जो जानकारियां, जो समाचार, न्यूज आते हैं, वो 100% सत्य होते हैं, और बहुत ही ज्ञान और मनोरंजन पूर्ण कार्यक्रम आते हैं। मनोरंजन तो हम कहीं से भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रेडियो से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शायद कहीं नहीं होगा। तो रेडियो बहुत ही अच्छा संसाधन है और हमें रेडियो को अपनाना है, और डिजिटल दौर चल रहा नहीं, मोबाइल ऐप पर आ रहा है, तो हम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।
0: तो आप रेडियो का कार्यक्रम सुनते हैं तो मोबाइल ऐप पर सुनते हैं कि रेडियो पर?
1: घर पर जब रहते हैं तो रेडियो पर ही सुनते हैं, और घर से कहीं बाहर रहते हैं तो मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, क्योंकि वो एक मजबूरी बन जाती है।
0: जी दीपक जी, कार्यक्रम में आपने फोन लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: नमस्कार भैया, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइश फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सहयोग भूपेंद्र कुमार वर्मा का, प्रस्तुति थी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की।
1: कार्यक्रम बहुत ही सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और राजन जी आपको मेरा नमस्कार।
2: बहुत बहुत नमस्कार सर, सभी श्रोताओं को और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। कार्यक्रम है बहुत ही और इसमें हम शामिल करते हैं अपने श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं, समीक्षाएं और उनके सुझाव और इन सभी से लबरेज होता है कार्यक्रम बहुत ही। तो इस बहुत ही कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता जुड़ेंगे उनके लिए ईमेल और डाक का पता बता दीजिए
2: जी। हमारे श्रोता नोट करें, ईमेल का पता है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com और डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001।
1: बिल्कुल, तो श्रोता समय निकालकर इसमें पत्र भेज सकते हैं और जिनको हम शामिल करेंगे रविवार के कार्यक्रम में भवदीय में
2: जी। और सर कार्यक्रम हम शुरू करें उससे पहले जैसा कि प्रशासन द्वारा हीट वेव के लिए जो अलर्ट जारी हुआ है सभी के मोबाइल में अलर्ट का मैसेज भी आया हुआ है, तो सर हमारे श्रोताओं को एक संक्षिप्त सी जानकारी संदेश आप दें हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल राजन जी, देखिए इस समय नवतपा भी देखिए शुरू हो रहे हैं
2: जी
1: कल से।
2: बिल्कुल,
1: और ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है और हम लोग सोचते हैं कि चलिए इस बार तो हमें कहाँ लगती है, हमें तो गर्मी नहीं लगती और निकल जाते हैं बिना किसी सावधानी के। वही लापरवाही हमें कई बार भारी पड़ जाती है और हमें लू की चपेट में आ जाते हैं
2: जी जी।
1: तो ऐसे में देखिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, खासकर देखिए घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं
2: जी जी।
1: या जो कई बार हमारे श्रमिक भाई हैं जो खुले में काम करते हैं उनको भी, और कई जो बीमारियों से पीड़ित हैं जैसे हृदय रोग हुआ या फिर बीपी शुगर वाले हैं, ये विशेष रूप से सावधानी रखें
2: जी। और सर जो सुबह का समय है उसमें हम जरूर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और 12 से जो 4 का समय है जो प्रशासन ने हमें चेताया है कि इस समय हीट वेव ज्यादा रहती है तो हम घर से बाहर ना निकले जब तक कोई अति आवश्यक कार्य ना हो।
1: बिल्कुल, और देखिए गर्मी का समय है तो देखिए पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना ही है, अपने पास जो भी उपलब्ध है, नारियल पानी हो या मठा हो
2: जी,

0: छाछ, नींबू पानी, जो भी तरल पदार्थ हैं बिल्कुल आपको लेना है। और कपड़े जो हैं वो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने इस समय में। और इसमें देखिए राजेंद्र जी, खीरा भी आ रहा है, तरबूज, खरबूजा, लौकी, टमाटर, तो इन सबको भरपूर उपयोग करें और हाइड्रेट रखें बॉडी
1: को। बिल्कुल पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए, ये हम सबको बहुत ध्यान रखना है।
0: और अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब कोई कहे कि हमें लू लग गई है, इसका हमें कैसे पता चले, तो कई बार देखिए चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, हल्का सा फीवर जैसा भी लगता है, मितली आती है और कई बार बेहोशी भी होने लगती है अगर बहुत ज्यादा लू लग जाए। तो ऐसे कुछ लक्षण दिखे ना तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
1: बिल्कुल, और सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे हीट वेव से बचे रह सकें। और सर अब उठाते हैं ये कार्यक्रम का पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है। लिख दीजा है हरबिलास सिंह तोमर और इनके परिवार वालों ने, ग्राम तरसमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं, आप सभी महान भावों को सप्रेम अभिवादन व नमस्कार। आगे आप लिखते हैं, 10 मई को भवदीय सुना, पसंद आया, श्रोताओं के सुझाव सुने, आपने उन सुझावों को यथासंभव पूरा करने का आश्वासन भी दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। 11 मई को युववाणी में एआई के विषय में ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। एआई मानव के विकास में भरपूर योगदान कर सकता है, बशर्ते इसके दुरुपयोग को रोका जाए। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से समझाया गया। इसमें हमारे युवाओं की सक्रिय भूमिका हो सकती है। इतनी लाभप्रद जानकारी के लिए कंप्यूटर्स महोदय को साधुवाद। लोकधारा में बद्री प्रसाद खरे निरंकार के स्वर में गाय लोकगीत अच्छे लगे। रमतुला में मालती विश्वकर्मा के स्वर में विवाह गारी पसंद आई। कार्यक्रम में एक वार्ता पसंद आई, कद्दू वर्गीय फसलों में कीट निदान। विशेषज्ञ महोदय ने बुआई से लेकर फसल आने तक अनेक सावधानियों पर प्रकाश डाला, आपको दिल से धन्यवाद। 12 मई को वंदना में हनुमान जी की आरती अत्यंत अच्छी लगी। चिंतन में निस्वार्थ सेवा व परोपकार पर प्रकाश डाला गया। प्रातःकालीन फिल्म संगीत मनमोहक लगा। आगे आप लिखते हैं, 12 मई को घरनी कार्यक्रम में एक वार्ता सुनी, अत्यंत पसंद आई। विषय था बुंदेलखंड में ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ती मांग। वार्ताकार ने इस विषय पर बड़े ही सरल ढंग से व विस्तार से समझाया। सचमुच हमारे प्राकृतिक एवं पारंपरिक पेय पदार्थ बेहतर माने जाते हैं, वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। इसके बाद लोक मंजरी में लक्ष्मी त्रिपाठी व शकुंतला शुक्ला के स्वर में रोपण गीत मनमोहक लगा। प्रस्तुतकर्ता एवं सहयोगी को दिल से धन्यवाद। 13 मई को खेती किसानी सुना, छोटी छोटी बातें कर जाती कितना अच्छा काम, समाज को होते जिनसे लाभ तमाम। कार्यक्रम में डीजल एवं पेट्रोल बचाने की अच्छी सीख दी गई, हमें अपने दैनिक जीवन में इस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद। ग्राम सभा में धारावाहिक अटकन चटकन सुना, अच्छा लगा। इसके बाद एक वार्ता सुनी, अत्यंत लाभप्रद लगी। बुंदेलखंड में फलों की खेती के विषय में उम्दा जानकारी दी गई। बेर, बेल, आम, महुआ आदि वृक्षों को लगाने की सलाह दी गई। वार्ताकार बृजेंद्र कुमार जी ने टपक सिंचाई पर अच्छा प्रकाश डाला, आपको साधुवाद। इसके बाद चंद्रभूषण पाठक के स्वर में बिलवारी पसंद आई। और इसी के साथ हमारे हरबिलास सिंह तोमर जी अपने इस पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
0: नियमित रूप से देखिए हमें पत्र प्राप्त हो जाता है आपका। हरबिलास सिंह तोमर जी मुरैना से पत्र भेजते हैं। इसमें आपने 10 मई से लेकर हमारे पास 13 मई तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है, और जिसमें देखिए आपने ग्राम सभा का विशेष रूप से आप देखिए कार्यक्रम का जिक्र करते हैं कि इसमें जो हमारे किसान भाइयों के लिए चर्चाएं, लोकगीत और विभिन्न कृषि विशेषज्ञों से जो वार्ताएं, भेंट वार्ताएं होती हैं वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके अलावा आपने डीजल और पेट्रोल की बचत के बारे में भी कहा है कि खेती किसानी में हमने ये सुना है, और आज देखिए राजेंद्र जी समय की मांग भी है कि हम डीजल और पेट्रोल की बचत करें और जहां आवश्यक हो वहीं पर देखिए इन संसाधनों का उपयोग करें, अन्यथा देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है।
1: और सर सबसे इसमें अच्छा विकल्प हो सकता है साइकिल, ई जो बैटरी से चलते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज ही हम देख रहे थे आप साइकिल से आए हैं और मैं भी साइकिल से ही आया हूं, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब हम इस तरह के वाहनों का उपयोग करते हैं, पर्यावरण से भी जुड़े रह सकते हैं। तो जरूरी है हम इन साधनों का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल की बचत में, ईंधन की बचत में एक बड़ा सहयोग हमारा होगा।
0: बिल्कुल, अगर लंबी दूरी है तो देखिए पूलिंग का इस्तेमाल करें, जैसे कार से जा रहे हैं तो 3-4 लोग एक साथ जाएं तो उनकी भी बचत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी 4 लोग हैं तो 4 कारें ले जा रहे हैं, और बहुत लंबी दूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, सेफ सुरक्षित पहुंचे, और डीजल पेट्रोल की देखिए बचत इसी तरह से होगी। और हमारे किसान भाई भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं कि सिंचाई में किस तरह से डीजल की बचत करना है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी तरह से सावधानी रखेंगे, बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरिविलास सिंह तोमर जी इस पत्र के लिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी। और सर अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है राकेश दास वर्मा बसारी दरवाजा छतरपुर से। इन्होंने अपनी राइटिंग में ये मेल भेजा हुआ है, बहुत कम समझ में आ रहा है लेकिन कोशिश करते हैं। लिख भेजा है 5 मई 2026 को भवदीय में हमारे रविन्द्र प्रजापति जी एवं राजेंद्र जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। और आप लिखते हैं आकाशवाणी के 50 वर्ष में कुछ दिन ही बाकी हैं, इसके पूर्व में कार्यक्रम में आपने बताया, हमें अच्छा लगा। आगे आप लिखते हैं 5 मई 2026 को ही चिंतन सुना, बेहद अच्छा लगा जो कर्म पर आधारित था। इसके आगे हमने फिल्मी गीत भी सुने, आनंद लिया। इसके बाद लोक रंजन, इसके बाद लोक रंग सुना, बहुत अच्छा लगा। एक ही गीतकार कार्यक्रम में इब्राहिम अश्क के लिखे गीतों का आनंद लिया। अश्क जी का जीवन परिचय देते हुए राजेंद्र जी ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आपने आपकी पसंद भी सुनी, अच्छी लगी। रमतुला कार्यक्रम सुना, आनंद जी की प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी। इसके बाद आप लिखते हैं 4 मई का सवाल हमारे जवाब आपके अंक भी सुना, बहुत अच्छा लगा। अंक 118 में कंपेयर राधिका जी और विश्वास तिवारी जी द्वारा पेश किया गया और इस कार्यक्रम में विजेता के रूप में महोबा के कृष्ण कुमार गुप्ता जी बने, उन्हें बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं आपकी पसंद में हमने एम आलम जी की प्रस्तुति सुनी 4 मई को, अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। हेलो फरमाइश भी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। और एक पत्र और सर इनका है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। आप लिखते हैं मैं नियमित रूप से कार्यक्रम सुन रहा हूँ। 9 मई 2026 को सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुना, बहुत अच्छा लगा। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे भक्तिमय भजन सुनाए गए, आकाशवाणी छतरपुर को बहुत बहुत बधाई। सुबह 7:20 पर हमने एक वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। सुबह 7:30 पर फिल्म संगीत में बहुत अच्छे अच्छे गाने हमें सुनने को मिले, बहुत बहुत बधाई। जो गाने माँ के ऊपर प्रस्तुत हुए, सुबह 8:30 पर गीत गुंजन कार्यक्रम सुना जो माँ की महिमा पर केंद्रित था, बहुत अच्छे गीत इसमें बजाए गए। कथा वस्तु भी बहुत अच्छी थी, कंपेयर राजेंद्र अहिरवार को बधाई। 9 बजे लोक रंग में बहुत अच्छे लोक गीत सुनने को मिले, बहुत बहुत बधाई। इसमें लोक रंग और लोक धारा में बहुत अच्छे अच्छे गीत हमें सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। 14 मई 2026 को शाम को युवाणी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। इसमें महिमा दीप पटेल और खुशी गंधी ने बहुत अच्छी बातचीत हेलो फ्रेंड्स में की, श्रोताओं से गाने भी बहुत अच्छे बजाए, बहुत बहुत बधाई। शाम को लोकधारा में राजू पटेल व साथियों के गाए हुए बुंदेली लोकगीत बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी छतरपुर को इतने अच्छे अच्छे बुंदेली लोकगीत सुनवाने के लिए। और आगे आप पत्र में लिखते हैं युवाणी में सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा पत्र लिखें, कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले पत्र में और अपने और भी नाम लिखते हैं, राकेश वर्मा, पवित्रा, कार्तिक कपूर, सिंह घोष। इसी के साथ ही अपने पत्र की समाप्ति करते हैं।
1: बिल्कुल राकेश दास कबीर पंथी जी पूरी मंडली के साथ ही कार्यक्रम सुनते हैं और हर बार देखिए उनकी मंडली का जिक्र भी होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखिए 5 मई से लेकर 14 मई तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है और जहां तक इस पत्र में समझ में आ रहा है कि दो बार किसी को विजेता क्यों बनाया है सवाल हमारे जवाब आपके में, तो देखिए आप सभी श्रोताओं के पत्र आते हैं और कई बार देखिए हम लोग तो सबकी पर्ची बना के निकालते हैं और अगर हो सकता है कि आपका भी नाम लगातार दो बार निकल आए, तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए सभी श्रोता बराबर है। आपने हमारे यहाँ के लगभग सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया है, विशेष रूप से फिल्मों से जुड़े हुए कार्यक्रम आपने सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पत्र आप हम तक भेजते रहे
0: जी। और सर एक छोटा सा पत्र हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पंचायत उपरेखा श्री रामपुर डेरा सरीला राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राजू यादव जी ने। आप लिखते हैं भव्य कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी को सादर प्रणाम नमस्कार। कार्यक्रम सुबह से शाम तक सभी हम सुनते हैं। लोक रंजन में श्री दशरथ रजक की आवाज में लोकगीत बहुत अच्छे हमें लगे। और इसी के साथ ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर।
1: एक और राजन जी सब मिलता जुलता ही इसी पते से एक पत्र है
0: जी,
1: अगला
0: ये पत्र भी हम पढ़ते हैं। ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम उपरेखा थाना मुस्कुरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ही, इसी गांव से ही। लिख भेजा है अनूप कुमार राजपूत, जगत सिंह राजपूत, आशु राजपूत, नेत्र राजपूत ने। आप लिखते हैं, सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं सोमवार से लेकर इतवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार में फरमाइश

0: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं और इसी के साथ ये भी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। कुछ इन्होंने ज्यादा नहीं लिखा,
1: सिर्फ दो दो लाइन में दो संदेश है हमारे पास जी। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सिर्फ नाम शामिल करने का कार्यक्रम नहीं है जी। इसमें आप अपनी समीक्षा लिखें, विस्तार पूर्वक पत्र लिखें। चलिए, आपने शुरुआत की है अनूप कुमार जी के नाम से है, रामपाल यादव जी के नाम से है कि आप पत्र भेजने लगे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उम्मीद है कि अगला कार्यक्रम विस्तार पूर्वक, उम्मीद है कि अगला पत्र आपका विस्तार पूर्वक हमें गहन समीक्षा के साथ, सुझाव के साथ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दोनों जनों को धन्यवाद देते हैं सर। उम्मीद करते हैं ये अब समीक्षा हमें लिखेंगे। और अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू, अरुणेश यादव का, देवकी विहार कॉलोनी, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। आप लिखते हैं, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिले दरिया नहीं रहता। और आगे लिखते हैं, भवदीय के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी राजेंद्र अहरवार जी को मेरे परिवार की ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, स्वीकार करें आप दोनों। आगे आप लिखते हैं, दिनांक 17 मई 2026 को भवदीय सुना, आप दोनों की प्रस्तुति में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे श्रोताओं की ईमेल राजेंद्र जी ने शामिल किए और उसे खूबसूरत अंदाज में हमारे आदरणीय रविन्द्र जी ने उत्तर दिए, बहुत ही अच्छा लगा, आप दोनों की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद। दिनांक 17 मई 2026 की सुबह 8:30 पर एक कार्यक्रम सुना, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आपका स्वागत है। मैं डीआईजी छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री जी से कार्यक्रम प्रमुख श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की भेंट वार्ता बहुत ही दिलचस्प लगी कि उच्च पद पर आसीन डीआईजी साहब आज भी रेडियो से लगाव रखते हैं। आपने अपने जीवन के सफर में अपने कैरियर और रेडियो को शामिल होने का अच्छा अनुभव साझा किया, सुंदर भेंट वार्ता के लिए आप दोनों को हृदय से धन्यवाद। दिनांक 19 मई 2026 को शाम ग्राम सभा में लोक मंजरी के अलावा विभिन्न विषयों पर काव्य पाठ सुना, लोकेन्द्र कुमार जी से बहुत ही अच्छा लगा, आपकी सभी रचनाएं मनमोहक लगी, आपको दिल से धन्यवाद। दिनांक 20 मई 2026 को एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म फूल और कांटे की कहानी और उसी के गाने भी सुनने को मिले, बहुत ही अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता जी को दिल से धन्यवाद। दिनांक 20 मई 2026 को सुबह 7:20 पर हिंदी महक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ सुना, रविन्द्र कुमार यादव जी से सुना, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी, आपको दिल से धन्यवाद। दिनांक 18 मई 2026 को एक ही संगीतकार में हिमेश रेशमिया द्वारा संगीतबद्ध गानों को सुनकर आनंद आ गया, प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद। और आखिर में, सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति सुंदर लगी, आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे बाबू यादव जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर।
1: आपके द्वारा भेजा गया बहुदी कार्यक्रम में ये पत्र आपका देखिए, स्नेह कहें, लगाव कहें, निरंतर जुड़ाव कहें, लगातार हमें पत्र आपका प्रेरणादायक पत्र मिल जाता है
0: जी।
1: आपने 17 तारीख को एक विशेष भेंट वार्ता का भी उल्लेख किया है
0: जी,
1: डीआईजी साहब विजय कुमार खत्री जी से, उनका जो रेडियो के प्रति प्रेम था, उनके अनुभव थे, वो उन्होंने साझा किए इस इंटरव्यू के माध्यम से। ग्राम सभा हो, एक ही फिल्म से कार्यक्रम, हिंदी महक, एक ही संगीतकार जैसे कार्यक्रमों में देखिए आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे जागरूक और संवेदनशील श्रोता ही हमारे आकाशवाणी परिवार की वास्तविक शक्ति कहें। आपका स्नेह, अपनापन, उत्साहवर्धन ऐसे ही हमें निरंतर देखने को मिलता रहेगा पत्रों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए। राजीव जी, देखिए हमारा बहुदी कार्यक्रम में पत्रों का पढ़ना और जवाब देना सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम मनोरंजन करवा देते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: हुआ है, लिख भेजा है ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश रानी, परी सूरभी, पायल और इनके परिवार वाले। आप आगे लिखते हैं, 16 मई को सुबह 7:20 पर मुन्ना लाल से काव्य पाठ सुना, सुंदर लगा। इसके बाद 8:30 पर गीत गुंजन सुना और फिर 9:30 पर पत्रों एवं ईमेल पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे सुना। इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हमारे राजेंद्र अहरवार जी को हमारी तरफ से सादर नमस्कार। आपका तो जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम में पत्र पढ़ना एक बेहद अच्छा अंदाज है। आपकी वाणी में पत्रों को सुनता हूँ तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इतना अच्छा पढ़ने का अंदाज है, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। 9:00 लोक संगीत में लोक रंग में भक्त सिंह यादव जी से बुंदेली लोकगीत सुने, काफी अच्छे लगे। और 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पसंद सुना। इसके बाद शाम की सभा में हेलो लोक रंजन कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरा कॉल काफी दिन बाद शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष एवं आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने एक परिचर्चा सुनी, इसमें संचालन किया आभार श्रीवास्तव जी ने, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। 17 मई को सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के अंतर्गत DIG विजय कुमार खत्री जी से रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। इसके बाद 9:00 राजा लाल विश्वकर्मा जी के गाए हुए बुंदेली लोकगीत हमने सुने, बहुत अच्छे लगे। 9:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लिया, इस पर बातचीत कर रहे थे हमारे सरजी रविन्द्र कुमार प्रजापति जी। कार्यक्रम सुंदर लगा, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं, हमारी तरफ से सरजी को कोटि कोटि धन्यवाद। 10:30 पर भवदीय कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। दिन में बाल सभा कार्यक्रम सुना, कृष्ण नामदेव जी से बाल मन सुना, अच्छा लगा। फिर शाम की सभा में 7:20 पर अटकन चटकन का भाग चौथा सुना, बहुत अच्छा लगा। 18 मई सोमवार को रमतुला कार्यक्रम सुना, प्रस्तुतकर्ता पुष्पेंद्र कुमार वर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। 9 मई मंगलवार को 6:35 पर खेती किसानी कार्यक्रम से कार्यक्रम अच्छा लगा। इसी दिन 7:20 पर हरिराम गुप्त जी से बुंदेली किस्सा सुनी, संकल्प। 9:00 राम सुमन अहरवार जी से लोकगीतों का आनंद उठाया। 10:30 पर आपकी पसंद सुना, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे शिवेंद्र शुक्ला जी, हमारी ओर से शिवेंद्र जी को कोटि कोटि धन्यवाद। शाम 5:40 पर फिल्म संगीत सुना, अच्छा लगा। शाम 6:30 पर पुष्पा अहिरवार से लोकगीतों का आनंद उठाया। शाम की सभा में ही 7:20 पर घरनी कार्यक्रम के अंतर्गत लोक मंजरी सुना, बहुत सुंदर लगा। और 20 मई बुधवार को सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ सुना रविन्द्र यादव जी से। इसके बाद 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम गीत गाता का भाग पांचवा सुना। 9:30 पर फूल और कांटे, इस फिल्म के गीत एक ही फिल्म से के अंतर्गत सुने, बहुत अच्छा लगा। 10:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इसे प्रस्तुत कर रही थी प्रणति चतुर्वेदी। इसके बाद दिन में 1:00 महिला सभा सुना और रात्रि 10:00 से 11:00 तक कार्यक्रम मन भावन सुना, प्रस्तुतकर्ता एम आलम खान जी को बारम्बार बधाई। और इसी के साथ ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: आपके द्वारा भेजी गई विस्तृत कहें भावपूर्ण कहें समीक्षा प्राप्त हुई है और हर बार ही प्राप्त हो जाती है।
0: जी जी सर,
1: आपकी जो अमूल्य प्रतिक्रियाएं हैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। 16 मई से 20 मई तक प्रसारित आपने विभिन्न कार्यक्रम सुने हैं, चाहे वो हमारा हिंदी वार्ता हो, खेती किसानी, बुंदेली सुगंध हो, गीत गीता धारावाहिक हो, महिला सभा, मनभावन, लोक मंजरी, सभी कार्यक्रमों की सराहना आपके पत्र में देखी मिली है। विशेष रूप से आपने देखे कुछ नाम भी लिखे हैं हमारे प्रस्तुतकर्ताओं के, उनका आपने उत्साह वर्धन किया है और आपके शब्द निश्चित ही उनका उत्साह बढ़ाएंगे। आपका यह प्रेम, अपनापन, निरंतर सहयोग हमारे लिए बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने। आप लिखते हैं नमस्कार, और आगे आप लिखते हैं ईश्वर के भजन सुनने और गाने में हमारे मन में असीम शांति और आत्मिक बल में वृद्धि होती है। 19 मई की वंदना में शास्त्रीय संगीत की दिग्गज गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में मीराबाई की रचना तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी को सुनकर अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। आज ही रामचरितमानस गान के भावार्थ में खगेश गरुण के 7 प्रश्नों के उत्तर ज्ञानी पक्षी काक भूषणी जी द्वारा विस्तार से दिए गए। उनको जानकर आध्यात्मिक ज्ञान समृद्ध हुआ। 19 मई के दिन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मंगलवार सुबह 8:30 से 9:00 तक उस्ताद अमजद अली खां का राग

0: क्योंकि आज के कार्यक्रम विवरण में इसी का शेड्यूल बताया गया, लेकिन अंग्रेजी समाचार के बाद 8:43 तक उर्दू खबरों का प्रसारण जारी रहा। यदि यह कंपेयर के द्वारा की गई मानवीय भूल के कारण हुआ या फिर एआईआर छतरपुर ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उर्दू समाचार सुनवाने का फैसला ले लिया है, स्पष्ट कीजिए। 17 मई को एक विशेष भेंटवार्ता छतरपुर के वर्तमान डीआईजी श्री विजय कुमार खत्री जी के साथ सुनी। इसके भेंटकर्ता श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी थे और यह कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने और एआईआर छतरपुर की स्थापना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में 50 वर्ष पूरे होने की खला का एक भाग था। जानकर खुशी हुई कि डीआईजी साहब एआईआर छतरपुर के नियमित श्रोता रह चुके हैं। खत्री जी ने अपने अब तक के कार्यकाल की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साइबर क्राइम बढ़ने के कारण जागरूकता की कमी और लालच होती है, इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। ऐसी भेंटवार्ताएं जनमानस में नई चेतना का संचार करके उनको जागरूक बनाती हैं और वे भयमुक्त होकर मुसीबतों से बचने में सक्षम होते हैं। डीआईजी श्री खत्री जी, रविन्द्र प्रजापति जी और आकाशवाणी छतरपुर का आभार और धन्यवाद। 18 मई सोमवार को गीत गाता का भाग चौथा सुना, जो कि कर्मयोग पर केंद्रित था। 20 मई बुधवार को संन्यास योग पर विस्तार पूर्वक काव्यात्मक ढंग से सरल और सहज भाषा में सुना, मन आनंद विभोर हो गया। इन दिनों उमंग कार्यक्रम हमारा भौगोलिक ज्ञान समृद्ध कर रहा है। 19 मई को वर्षा वनों पर सामान्य किंतु महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे उपयोगी जानकारी मिली। 20 मई बुधवार को विश्व के सबसे बड़े अमेजन वर्षा वनों पर विस्तार से जान सके। इन वनों का क्षेत्रफल, पाए जाने वाले दुर्लभ वन्य जीव जैसे जगुआर, गोल्डन मंकी, पाइजन, पॉइजन, डॉट फ्रॉग बारे में रोचक जानकारी प्राप्त हुई। बड़े और सबसे भारी सांप एनाकोंडा और बुलेट एंट के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त हुई। उमंग की पूरी टीम और अनुप्रसारण के लिए अपनी प्रिय आकाशवाणी छतरपुर को धन्यवाद और आभार। और इसी के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने इस पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: आपके द्वारा भेजी गई समीक्षा बड़े ध्यान और रुचि के साथ देखिए पढ़ी भी गई और हमारे श्रोताओं ने सुनी भी होगी। आकाशवाणी छतरपुर के विभिन्न कार्यक्रमों को आपने नियमित रूप से सुना और उनका सुंदर शब्दों में वर्णन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने इस पत्र में 19 मई और 20 मई को प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो भेंटवार्ता हो, गीत गीता धारावाहिक हो, एनसीईआरटी का उमंग कार्यक्रम हो या मानस का पाठ हो या शास्त्रीय संगीत, सभी का आपने जिक्र किया है इस पत्र के माध्यम से। आपने कार्यक्रमों की उपयोगिता, ज्ञानवर्धक प्रस्तुति और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने वाले संदेशों को जिस आत्मीयता से व्यक्त किया है वह सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे कि आपने साइबर क्राइम की भी बात कही है और विशेष रूप से आपने विजय कुमार खत्री जी का जो भेंट वार्ता है उसका जिक्र किया है कि

0: 02 और STD कोड है 0755।
1: हेलो, फोन करेंगे सुने?
0: जी फोन करेंगे सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम सागर से बोल रहे हैं, पंडित शिवनारायण तिवारी।
0: क्या करते हैं आप?
1: पंडिताई करते हैं सर।
0: अच्छा, तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आज सुनना चाहेंगे सौतन की बेटी का।
0: सौतन की बेटी का कौन सा गीत के बोल बताएंगे?
1: ये हल्का हल्का सुरूर है।
0: ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
0: गर्मी बहुत पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 44-45
0: 44-45-46 जो कभी हम लोग नहीं देख पाते थे, अब उसका इसमें का कहीं ना कहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं।
1: हाँ, वही तो, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है।
0: आप जैसे जागरूक श्रोता अगर ये जानते हैं तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या?
1: वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरे हरे वृक्ष होने चाहिए, लगाना चाहिए।
0: जी जी जी,
1: हमारे खेत पले हुए हैं।
0: ठीक है, तो आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, रे मुझे एक शराबी बना दिया।

अरे कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया।

0: फोन कर इस गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश, हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह बोल रहे हैं
1: जी सर,
0: नागदा उज्जैन से। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर मैं फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: नीले गगन के तले, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है, लेकिन अभी तो मौसम है बड़ा गरम गरम सा हो रहा है कुछ।
1: जी बिल्कुल, काफी गरम हो रहा है और आपको बताऊं टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीबन चल रहा है।
0: जी जी,
1: मतलब 20 दिन से ऐसा ही लगभग मौसम हो रहा है और काफी गरम तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी, लेकिन हमने इसलिए मौसम की गर्म की बात की क्योंकि ये जो गीत फिल्माया गया है नीले गगन के तले, एक शरद ऋतु में फिल्माया गया है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेरे घर के पास में 2 बड़े बरगद के पेड़ हैं।
0: जी
1: वहाँ पे मतलब काफी पक्षी आते हैं, शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं। उनकी जब चहचहाट होती है ना तो मतलब उस समय शाम का जब समय होता है ना तो काफी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कुदरत जो हमें देती है, कुदरत की जो ध्वनियां होती है, चाहे पंछियों की हो चाहे पेड़ों की सरसराहट की हो, उसका एक अलग ही मजा होता है ना।
1: जी बिल्कुल, तो उन जो पक्षी आते हैं ना उनके लिए हमने मतलब है ना 2-3 टब में पानी भर के रखा हुआ है और ऐसे मतलब
0: बहुत बढ़िया
1: ऊपर के लटका रखे हैं मतलब पेड़ के नीचे, ताकि उनमें बैठे हो और पानी पिए। और मतलब कुछ ऐसे पक्षियों के लिए मतलब दाने भी बिखेर रखे हमने कि वो पानी भी पिए, मतलब वहां पे बैठे और वो अपना दाना भी खाए।
0: प्रेम सिंह जी आप तो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, छत पर एक सकोरा रखते हैं, एक पीछे गार्डन में रखते हैं और एक आगे रखते हैं, और उसके अलावा चिड़िया गिलहरी और कबूतर पूरे सब आके उसमें बिल्कुल पानी पीना खाना और आवाज देते हैं, आपको बताएं सवेरे सवेरे से हमको।
1: जी बिल्कुल, अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है ना सर तो मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: बैठ जाते हैं और मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसमें पानी खत्म हो गया, उनकी भाषा में बोलते हैं तो हमें मतलब पता चल जाता है कि इनके बर्तन में पानी खत्म हो गया,
0: बिल्कुल
1: दाने खत्म हो गए तो डालना है हमें।
0: तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपका जो गीत है आपकी पसंद का हमराज फिल्म का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें जी सुने।
1: पल पल की दोस्ती का वादा है आपसे, अपना पल कुछ ज्यादा है आपसे, मत सोचना कि भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे ये वादा है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी बात किससे हो रही है?
1: मैं पालदाना का इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी, बताइए मोहम्मद रफी साहब आप क्या सुनना चाहेंगे? आप तो खुद गानों के सरताज हैं, नाम आपका मोहम्मद रफी है।
1: जी शुक्रिया। ये फकीरा का सुनवा दीजिएगा सर, हम तो झुककर कलाम करते हैं।
0: हाँ बहुत बढ़िया गाना है और बहुत दिनों में सुनने में आएगा ये।
1: हाँ हाँ, ये हिडन गाने रहते हैं सर कुछ।
0: बहुत बढ़िया, एक अलग तरह के की पसंद है आपकी, आप कव्वाली बेस्ड गाने आप थोड़े से पसंद करते हैं।
1: हाँ, कव्वाली शरारत और मस्ती भरे जो गाने रहते हो।
0: तो ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, गीत का आनंद लीजिए।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
2: नमस्ते, गंगा मेरा बात करें नीमच से।
1: कैसी हैं गंगा जी आप?
2: अच्छे हूँ मैं सर, आप कैसे हो?
1: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। आज क्या सुनना चाहेंगी?
2: सर मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं और गाने का बोल है चांद मेरा दिल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। इसी गीत को पसंद करने की कोई खास वजह?
2: जी सर, हमारी सिस्टर को बहुत पसंद है ये सॉन्ग।
1: अच्छा।
2: हम उसके लिए सुन रहे हैं।
1: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपके सिस्टर और आप दोनों गीत का आनंद ली। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करेगी सुनी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: महेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ, मंदसौर।
0: महेंद्र वर्मा, स्वागत है महेंद्र जी का। क्या करते हैं महेंद्र जी, आप हमारे शो पर जानना चाहेंगे?
1: सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ।
0: क्या क्या बनाते हैं आप, वेल्डिंग करके या केवल?
1: सर वो गेट की फ्रेम आती है और वो सब आता है ना, सब बनाते हैं।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की शॉप है या फिर आप कहीं किसी के पास काम करते हो? शॉप क्या क्या है आपकी? और
1: सर हमारा शौक स्विमिंग करना है।
0: स्विमिंग? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो कुछ आसपास नदी या कुछ इस तरह के का है, तालाब वगैरह क्या है आपके?
1: सर मंदसौर में।
0: मंदसौर में
1: वाटर पार्क है ना, मंदसौर में
0: वाटर पार्क में।
1: वहाँ शिवना नदी भी है, वो पशुपतिनाथ मंदिर है ना वहाँ पे।
0: मतलब नेचुरल स्विमिंग का आनंद लेते हैं आप। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और गाने की बोल है मन मेरा।
0: तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: यहाँ से मुजफ्फर संदल पर आंद्री से।
1: काली चरण यादव जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं ग्वालियर के पास गाँव मेरा आंद्री संदलपुर।
1: संदलपुर क्या करते हैं काली चरण जी आप?
0: मैं पानी की काम करता हूँ, पानी की पान हो रहा है हमारे गाँव में, देसी पान हो रहा है गाँव में संदलपुर में।
1: जी जी जी, तो ये पान की खेती में काम करते हैं या खेती आपकी खुद की है?
0: खुद की खेती करते हैं ना हम।
1: जी
0: होती है हमारे,
1: क्या होती है फिर से बताइए थोड़ा सा।
0: देसी पान होता है हमारे गांव में, मेरे गांव में रात्रि संगलपुर में।
1: हाँ हाँ हाँ, तो इसकी तो आपने पूरा पॉलीहाउस के अंदर करते हैं या ओपन में करते हैं इसको?
0: उसमें पत्थर की दीवार होती है ऊंचाई में, उसमें तैयार करके डालना चाहना पड़ती है, बांस लगाना पड़ती है, बहुत मेहनत।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांस लगाना पड़ती है, मंडप बनाना पड़ते हैं। हाँ हाँ, नहीं पॉलीहाउस के अंदर हमने इसकी खेती देखी है।
0: आपने कहाँ देखी थी
1: सर? ये हरदा में।
0: हरदा पानी की थी मालम में होती, पानी की थी मालम गुरु।
1: जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे कालीचरण जी?
0: मेरे को गाना सुनना है पटका फुल माधव, जब प्यार किसी से होता है 100 साल पहले मुझसे प्यार कर लो पारे के बारे में गाना है, पुरानी पिक्चर है।
1: हाँ ये देवानंद और आशा पारिक की फिल्म है। तो चलिए आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार, फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मैं ग्राम बासिता जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं आपका दोस्त बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो सर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: नमस्कार, फोन करें जी, सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो, राधारानी सर
0: जी, नमस्ते।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है हमारी?
1: राधारानी, राजनंदिनी बात कर रही हूँ।
0: राजनंदिनी, तो क्या सुनना चाहेंगे राजनंदिनी जी?
1: सर, मुझे नाम है संघर्ष, गाने के बोले पहली पहली बार बलिए दिल का हार।
0: और कुछ कहना चाहेंगे राजनंदिनी जी?
1: जी सर, कहना चाहेंगे अभी घर में बहुत पड़ रही है, तो कृपया घर में आए।
0: हाँ जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन जो काम है हम लोगों को वो तो करना ही होते हैं।
1: वो तो एक बार भी तो जरूर, हाँ हमें तो ही बाहर निकले।
0: बिल्कुल, लेकिन लेकिन गर्मी के लिए, इसे बचने के लिए जो एहतियात है वो बरत सकते हैं हम लोग, है ना? अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता लेकर जा सकते हैं, गाड़ी पर है तो टोपी लगा सकते हैं, है ना? और उसके
1: चीजों का सेवन करें,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मठा पिए, नारियल पानी पिए, इस तरह
1: इलेक्ट्रोल अपने साथ में हमेशा रखें।
0: इलेक्ट्रोल ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी बात है
0: जी। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। की तारा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो कार्यक्रम फोन करें जी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: श्रीताप जाखड़े बोल रहे हैं, जिले महाराष्ट्र से।
0: श्रीताप जाखड़े, जाखड़े साहब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: ये मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना सुनना है, मधुमती का।
0: मधुमती फिल्म का कौन सा गीत?
1: मधुमती का है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है दिल ने।
0: टूटे हुए ख्वाबों ने, ये सैड सॉन्ग सुनने का क्या कारण है? आपकी कोई वजह है इसकी कुछ?
1: हाँ, हमको तो मतलब ये पुराने गाने बहुत पसंद है ना।
0: पुराने गाने आपको पसंद है इसलिए सुनना चाहते हैं। गीत बहुत अच्छा है,
1: सलीम चौधरी साहब का संगीत है।
0: तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: अभी आपने सुना मधुमती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता थे महाराष्ट्र से श्रीताप जाखड़े। मधुमती फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज जबलपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। वे यहां समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कल भोपाल के तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा, वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले जिस गीत को हमने लिया है उसके सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलेखा, पारस मनी,

और संदीप पाटिल। इसी गीत को सुनना चाहा है वसंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल।

भाटेपाड़ा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेद्र कुमार, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सुमृति पंचोलिया, आप सभी को सुनना चाहा है आंखें फिल्म नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनाते हैं ये नगमा।

0: रात कभी कभी।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पाकिजा रेडियो संघ वचन कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अलकना खत्री, अलमश खत्री, रमेश कौर और शादाब खत्री ने। एक और हमें खत मिलता है झारखंड से, लिखने वाले हैं विकास शर्मा, ज्योति, मीना, मीरा सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। इन्होंने सुनना चाहा है पिघलता आसमान फिल्म का नगमा, आवाज लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।

नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, रूपो, ऋषिका और रॉबिन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाजों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर।

अयब आपको सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ और शरीद, गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम दिल तो बच्चा है जी।

संस्कृत के साथ ही फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

0: संशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है।

0: मित्र, मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा।
1: वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़ा स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं।
2: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो, मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा, आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिये प्रिये, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
3: ना
1: देखो देखो,
3: क्या स्वाद है, तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रत्मुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
3: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ, वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता, इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
3: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया। जान पाता है वो कोई वांगी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वही रहते हो।
1: ये तुम क्या कर रही हो? तुम व्यर्थ संदेह कर रही हो।
3: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दास्तान के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों हो रही हो?
3: देखो, इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे मैं उसे कैसे मार सकता हूँ?
2: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
1: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा। उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूँ।
2: क्यों बोला?
1: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
2: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
1: क्योंकि भैया, मैं रोज तुम्हारे घर आकर जामुन खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
2: ओ, ये बात है। अरे मित्र, इसमें कौन सी आपत्ति है? चलेंगे कभी? चलेंगे, जरूर चलेंगे।
1: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चोखा सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदनवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
2: मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं।

0: जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
1: रत्नमुख भाई, समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
0: अच्छा,
1: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
0: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: भाई तनिक धीरे धीरे चलिए, जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है, ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
1: अब तुम्हें इसे बीच सागर में ले आया हूं, ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता।
0: संभाल के थोड़ा,
1: मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले। रत्नमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहां मारने के लिए लाया हूं। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
0: भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
1: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
0: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है, मैं उसे लाकर भावी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
1: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अंशन को तोड़ सकूं।
0: प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
1: नौ मित्र तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए, अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
0: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
1: अरे मित्र, ए मित्र,
0: हाँ?
1: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
0: मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
1: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, चलो पुनः प्रयत्न करता हूं। संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले।
2: अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी, तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी

0: उसके सारे कुटुंब जनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवार जनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा कराल मुख।
1: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं शंकर के यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
0: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता, क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
1: नहीं तो
0: सुनो। किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था। अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
1: अच्छा?
0: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
1: अच्छा। पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
2: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
1: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
2: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
3: वर रुचि ने वही किया, फिर उसकी स्त्री नंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोग वश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।

0: क्यों क्रोधित हो रही है? आपको ये करना क्या शोभा देता है?
1: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराजा धीराज

0: खबर रुचि, किस पर्व पर तुमने ये बंधन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़ी की तरह हिंडाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वररुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।

0: मुझे अभागे पर ही क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो।
1: अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
2: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
0: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी है। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।

0: काम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
1: अरे कृतज्ञ पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।
0: भद्र, विद्वानों का कथन है एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा, अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
1: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
0: अच्छा,
1: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
2: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी की पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जी, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशन नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनने ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उमरिया जिले के ग्राम खेरवा टोला में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर भोपाल के रविन्द्र भवन में कल सुरों की लोक सूफी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली विवाह गीत से की, उसके बाद मशहूर सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर बना रहेगा। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोलवाल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं। दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे के विषय में, जिसे हम प्रतिवर्ष 24 मई को मनाते हैं। बहनों, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आजाद हुए दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। बहनों, राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा। उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने विकास संभव होगा, यदि देशों के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। राष्ट्रमंडल केवल देशों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो या रहन सहन अलग हो, फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। भारत जैसे देश ने हमेशा वसुदेव कुटुम्बकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश दिया है। आज युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाएं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय हमें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। बहनों, विश्व शांति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सद्भाव की भावना रखे तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्योहार के विषय में। बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे त्योहार केवल उत्सव नहीं होते,

बल्कि वे हमारी परंपराओं, आस्था, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। गंगा दशहरा भी ऐसा ही पावन पर्व है जो इस वर्ष 25 मई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई और लोगों के पापों का नाश किया, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा हमारे खेतों को सींचती है, लोगों को जल प्रदान करती है और भारतीय सभ्यता को जीवित रखती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को माँ कहा गया है। गंगा दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज नदियां प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं तो हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखना होगा। त्योहार समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और खुशियां बांटते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही अपने देश की पहचान को बचाना है। बहनों, गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आइए हम सभी माँ गंगा का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी महान संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे कैरियर बनाने के विषय में। बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को खेल, किसी को चित्रकला, तो किसी को विज्ञान और तकनीकी। लेकिन अक्सर लोग अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों की नकल करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। बहनों, सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब हम अपनी रुचि को और क्षमता को समझ लेते हैं, तब सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यदि किसी बच्चे की रुचि खेल में है और उसे जबरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कहा जाए, तो वह कभी पूरी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों को ही अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, खेल, लेखन, यूट्यूब, डिजाइनिंग और कई नए क्षेत्रों में भी शानदार अवसर है। बहनों, हमें अपनी कमजोरी से डरने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सफलता में बदल सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और उसी दिशा में मेहनत करे। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति अनोखा है। यदि हम अपनी क्षमता को लें और उसे सही दिशा दें, तो निश्चित रूप से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और अपने सपनों को साकार करें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों के विषय में। बहनों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों को ऐसे संदेश देते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व मुद्रा भंडार की बचत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 7 बातें इस प्रकार हैं। पहली, ईंधन की खपत कम करें। पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करें। जहां संभव हो वहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कार पुलिंग को अपनाएं। दूसरी, सोने की खरीदारी टालें। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। विदेशी यात्राओं में कमी। गैर जरूरी विदेश यात्राओं और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें। चौथी, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि ईंधन और समय की बचत भी हो। उन्होंने यहाँ पर हमें यह भी बताया कि इसका प्रयोग हम लोग कोरोना काल में कर चुके हैं। पांचवी, खाद्य तेल का कम उपयोग करें। सेहत और देश के आयात बिल को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाएं। छठवीं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने की अपील की गई है। सातवीं, स्वदेशी अपनाएं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। बहनों, इसमें उन्होंने लोगों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है, जो हम बहनों से सीधा जुड़ा है। बहनों, यदि हम खाद्य तेल की बात करें तो आजकल लोग तला भुना भोजन अधिक खाने लगे हैं। इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हम तेल का सीमित उपयोग करें और संतुलित भोजन अपनाएं, तो हम स्वस्थ

रह सकते हैं। बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश हित से भी जुड़ा है। भारत को खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यदि खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी हम कम कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा। इसी प्रकार सोने की अत्यधिक खरीदारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत में लोग सोने को निवेश और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक सोना खरीदने से देश का पैसा विदेशों में जाता है, क्योंकि लगभग 90% सोना आयात किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग अपनी बचत को उत्पादक कार्यों में लगाएं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, स्टार्टअप और देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी आदतें भी देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के संदेश केवल सलाह नहीं, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और देश हित में सर्वोपरि रहना चाहिए। आइए हम सभी एक जागरूक नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।

दिनों 25 तारीख को गंगा दशहरा है और इस दिन शिवपुरी अंचल में मंदिरों में भी आम खरबूजा दान करने का चलन बहुतायात में है और इंदिरा बाजार में खरबूजे और आम बहुत ही आ रहे हैं। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं खरबूजे की कुल्फी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ और बारीक कटा हुआ खरबूजा, 1/2 लीटर फुल फैट दूध, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, सजाने के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, 2 बड़े चम्मच मलाई। अब एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में ना लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसकी स्मूदी बना लें। अब ठंडे दूध में खरबूजे की प्यूरी मिलाएं, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड या ना हो आपके पास तो आप छोटे ग्लासों में भरकर ऊपर से फॉइल पेपर से पैक करके और इसमें एक स्टिक लगा सकती हैं। 6-8 घंटे या रात भर के लिए इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। सुबह आप इसे डीमोल्ड करें और तैयार है आपकी ठंडी ठंडी खरबूजे की कुल्फी। चलिए बहनों अब बनाते हैं आम और नारियल से बनने वाले टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ताजा या सूखा हुआ नारियल जिसे आप कद्दूकस कर ले, 3/4 कप आम का गाढ़ा पल्प, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर, सजाने के लिए नारियल का बूरा। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, इसमें किसा हुआ नारियल डालकर 2 मिनट हल्का भून लें। अब आम का पल्प डालें और लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण पैन के किनारे छोड़ने लगे तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। सूखे नारियल के बूरे में रोल करें, ऊपर से मनचाहे ड्राई फ्रूट से सजाकर 20 मिनट फ्रिज में रखें और ठंडे ठंडे सर्व करें। आप चाहे तो ये दोनों रेसिपी गंगा दशहरा पे बनाकर बजाय आम और खरबूजे चढ़ाने के भगवान को इसका भोग लगा सकती हैं। बहनों इस समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

हितेश सोनिक का संगीत, अमोल गुप्ते के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज में फिल्म तारे जमीन पर से।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल आमिर खान और शान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म तारे जमीन पर से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांगचेनजोंगा की पांच धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांगचेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की।
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से

0: रोजगार को लेकर के वर्ष काम किया था, उसके बलबूते पर हमारे आस पास के जिलों को भी रोजगार मिलने व्यवस्था का प्रबंधन कर रहे हैं।
1: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्रिशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत में 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मनोथर में प्रशासन आर्क द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से उन्हें प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय

0: प्रमुख बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुले। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मे दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन

0: से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सेवम इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सेवम के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सेवम नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश

में लगाए थे। उसे विश्वास था कि एक दिन माँ इन्हीं पेड़ों के जरिए उससे उसकी माँ की मुलाकात होगी। इसी आशा में उसने बहुत बहुत सारे पेड़ लगाकर एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर लिया। धीरे धीरे उन पेड़ों पर बहुत ढेर सारे फल आने शुरू हो गए। उसका नजारा बहुत ही सुंदर हो गया। गाँव के लोग भी सभी लोग कोमल की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद ग्राम बैंदा में जन समस्या की सुनवाई हेतु माननीय जिला अधिकारी महोदय साहब की चौपाल लगी। जिले के तमाम बड़े आला अफसर उस गांव में, एक छोटी सी गांव में जन समस्या की सुनवाई के लिए चौपाल में आए। सुबह 10 बजे सभी अधिकारी उपस्थित हुए। दिन भर लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान किया गया। शाम के वक्त चौपाल खत्म होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर साहब की गाड़ी जैसे ही उस गांव से निकली तो रास्ते में कोमल का बगीचा पड़ता था। कोमल उस समय अपने बगीचे के बाहर ही खड़ी थी। कोमल ने देखा कि सामने से कुछ गाड़ियां आ रही हैं और रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कोमल ने उस पत्थर को हटाते हुए वे अपने बगीचे में चली गई। यह सब नजारा माननीय जिला अधिकारी महोदय हमीरपुर देख रही थी। जैसे ही गाड़ी कोमल के बगीचे के पास आई, जिलाधिकारी साहब ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। जिलाधिकारी साहब गाड़ी से उतरकर जैसे ही बगीचे के बाहर आए, उन्होंने देखा बड़ा सुंदर नजारा है बगीचे का। उनसे रहा नहीं गया और वो बगीचे के अंदर घुस गए। वहाँ का नजारा देख वो दंग रह गए। वहाँ एक से एक पेड़ लगे हुए थे। सभी पेड़ों पर ढेर सारी पत्तियां, फूल और फल लदे हुए थे। हर पेड़ पर एक तख्ती पर जिस पर लिखा था एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इस प्रकार का नजारा देख माननीय जिलाधिकारी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पूछा, बेटा इन सब का अर्थ क्या है? हर पेड़ पर लिखा हुआ है एक पेड़ माँ के नाम। कोमल ने बड़े शांत भाव से कहा, सर जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं। जब भी मैं अपने पापा से पूछती हूँ, पापा मेरी माँ कहाँ है, तो पापा कहते हैं कि माँ भगवान के पास है। और ये पेड़ है, ये प्रकृति है, ये सुंदर रचना है, ये सब मेरी माँ की ही देन है। ये फल मुझे अपनी माँ से ही प्राप्त होते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं, इन सब पेड़ों पर फल मेरी माँ ही पहुँचा रही है। जिलाधिकारी साहब बड़े भावुक हो गए। एक तख्ती पर कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। उन्होंने कोमल को बड़े धीरे स्वर से कहा, बेटा इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? ये पंक्तियां किसकी याद में लिखी गई हैं? कोमल ने कहा, सर मैंने अपनी माँ की याद में कुछ ये पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं आपको इन पंक्तियों को गुनगुनाकर समझा रही हूँ। तब जिलाधिकारी ने इशारे से कहा, बेटा समझाओ। बड़े शांत भाव से उन्होंने कहा, कोमल की तरफ इशारा किया। तब कोमल ने उनको कहा कि

एक पेड़ माँ के नाम, माँ कहती है बार बार पेड़ लगाओ हजार बार, गर तू पेड़ नहीं लगाएगा प्रकृति की छाव कहाँ से पाएगा। भीषण गर्मी पर करते प्रहार, शीतल वायु का करते प्रसार, पेड़ लगाओ हर घर बार, मानव जीवन का है सार। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, घर आंगन खुशियाँ लाएगा, जीवन में हरियाली भर देगा, आयुष्मान आश्रय छाया देगा। सुन लो काका सुन लो काकी, कुटुम्ब धरा का श्रृंगार सजाना है, पर्यावरण संरक्षण अभियान में एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। जिलाधिकारी साहब इस प्रकार की पंक्तियां सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत गदगद हुए। उन्होंने उस ग्राम के सचिव को आदेश दिया कि अगले दिन इस बच्ची को उसके पिता के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हों। अगले दिन सुबह ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी, कोमल के पिता और कोमल दोनों बच्चियां जिलाधिकारी साहब कार्यालय में उपस्थित हुई। उन्होंने उस बच्ची का सम्मान किया। तो प्यारे बच्चों, आज पर्यावरण संरक्षण में बहुत जरूरी हो गया है कि हम सबको पेड़ जरूर लगानी चाहिए। हम लोगों को अपने घर के आसपास जहां भी जगह मिले, इस मुहिम में हम लोगों को आगे आना चाहिए। हमारी बढ़ती पृथ्वी का तापमान ये इशारा कर रहा है। अगर हमें अपनी पृथ्वी माँ को बचाना है।

0: तो हमको एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। हमारी माँ, हमारी पृथ्वी, सभी हमारी माँ है, हम उनकी संतान है। तो प्यारे बच्चों, सभी आप एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएंगे ना? हाँ लगाएंगे बच्चों। इस प्रकार हम सबको पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।
1: बाल साथियों, अभी आपने प्रेरणा से भरी एक कहानी सुनी, एक पेड़ माँ के नाम। कहानीकार थे मिथुन भारती। और बाल साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अगले चर्चा की ओर। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निडर होकर फैसला लेते हैं और परिणामों से नहीं घबराते हैं। बाल साथियों, ये कथन है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनकी आगामी 27 मई को है पुण्यतिथि। बाल साथियों, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है ये दिन। बाल साथियों, माँ स्वरूपा रानी व मोतीलाल नेहरू के इस पुत्र का जन्म 14 नवंबर वर्ष 1889 को प्रयागराज में हुआ था। वे बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और बच्चों से बेहद प्यार भी करते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल साथियों, बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बाल साथियों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से हुई। लॉ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। बाल मित्रों, इनका विवाह कमला रानी जी से हुआ और इनकी एकमात्र संतान थी इनकी पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, जो बाद में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बाल साथियों, वे गांधी जी से बेहद प्रभावित थे। वर्ष 1912 में वे कांग्रेस से जुड़े और इसके बाद वर्ष 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बाल साथियों, वर्ष 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसके विरोध में वे घायल हो गए। इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके बाद इन्हें 6 माह की जेल हुई। उन्होंने 9 बार जेल यात्राएं की और वे 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाल साथियों, इन्होंने पंचशील सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वर्ष 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाल साथियों, जब देश आजाद हुआ तब वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई वर्ष 1964 तक वे इस पद पर आसीन रहे। बाल साथियों, 27 मई वर्ष 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ऐसे महान पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर हमारा शत शत नमन। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर। बाल साथियों, आगामी 28 मई को है स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, चिंतक, लेखक विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती। बाल साथियों, इनका जन्म 28 मई वर्ष 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। इन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। बाल साथियों, कम उम्र में ही माता पिता के देहांत के बाद बड़े भाई ने इनका लालन पालन किया। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई करने लंदन गए। बाल साथियों, वर्ष 1899 में मित्र मिला नाम का एक संगठन बनाया, जिसे बाद में अभिनव सोसाइटी के नाम से जाना गया। बाल साथियों, वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के आरोप में 50 साल के कठोर कारावास की इन्हें सजा सुनाई गई और काले पानी की सजा के बीच इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, जिसे प्रकाशन के पूर्व ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाल साथियों, इसके अलावा जेल में रहते हुए जेल की दीवारों पर एक कील के माध्यम से इन्होंने 10,000 पंक्तियों की एक कविता लिखी, जिसे बाहर आने पर पुनः लिखा और संकलित किया। बाल मित्रों, वे वर्ष 1937 से वर्ष 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। बाल साथियों, जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ भी काम किया। उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जहां सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। बाल साथियों, उनकी जयंती विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है एवं रैलियां निकाली जाती हैं। ऐसे महान समाज सुधारक, चिंतक, लेखक सावरकर जी को उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन। बाल साथियों, आगामी 28 मई को है इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार ईद उल जुहा। ये त्योहार पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति

टूट विश्वास और उनके सर्वोच्च बलिदान की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ने ऐन मौके पर इस्माइल की जान बख्श दी और उसकी जगह एक दुम्बा यानी कि भेड़ की कुर्बानी स्वीकार की। बाल साथियों, ये दिन जिलहिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, जो पवित्र हज यात्रा का भी समापन दिवस होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष सामूहिक प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। और बाल साथियों, अब इस चर्चा को देते हैं विराम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं अगली चर्चा की ओर। गर्मी की छुट्टियां आई, खुशियों की सौगातें लाई, स्कूल बैग को रख दें दूर, अब मस्ती की बारी आई। जी हाँ बाल साथियों, गर्मियों की छुट्टियां तो आ गई हैं, लेकिन मस्ती के साथ इन छुट्टियों का सदुपयोग भी करना जरूरी है। तो आप कैसे कर सकते हैं गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग, आइए जानते हैं इस चर्चा के माध्यम से। तो बाल साथियों, गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अपनी कुछ चिल्ड्रन मैगजीन्स, कॉमिक्स, बुक्स लाकर एक जगह जमा कर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं। रोज एक बुक पढ़कर या चैप्टर पढ़कर अपनी पसंदीदा कहानी या जनरल नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। समय सीमा का ध्यान रखकर इसे स्टोरी टेलिंग सेशन भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक सर्किल में बैठकर कोई एक दोस्त से कहानी कहने को कहें और फिर सभी उसमें एक पंक्ति जोड़कर उस कहानी को पूरा करें। इससे कल्पनाशीलता और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। बाल मित्रों, एक दिन दोस्तों के लिए कुछ चैलेंजिंग गेम्स रखें, जैसे एक मिनट में ज्यादा जंप करना, सबसे जल्दी ड्राइंग या जीके क्विज हल करना, चुटकुले, कविता पढ़ना आदि। और बाल साथियों, सबसे बेहतरीन काम है अपने घर के आसपास आने वाले पंछियों के लिए पानी रखें व सफाई करें। इससे आप कुछ अच्छे काम तो सीखेंगे ही, साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझ पाएंगे। बाल साथियों, एक दिन आप ग्रुप एक्टिविटी डे बनाएं, जैसे पोस्टर, कार्ड या कोई DIY आइटम बनाएं। सबसे अच्छी क्रिएटिविटी को आप एक छोटा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा गुड वर्क मिशन के तहत मिलकर आप एक पौधा लगा सकते हैं और उसकी देखभाल का संकल्प ले सकते हैं। बाल साथियों, हफ्ते में एक दिन सभी दोस्त मिलकर किसी एक के घर पर कोई पसंदीदा फिल्म भी देख सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीन या डायलॉग सबसे अच्छा लगा। इससे सोचने और अपनी बात कहने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और बाल साथियों, मनोरंजन के लिए आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं, फिर पिकनिक में गेम खेलें, मस्ती करें, कुछ इस तरह।

0: दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

बाल साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म ड्रीम गर्ल से। गायक स्वर थे लता मंगेशकर एवं साथियों के। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और बाल साथियों, चाय हम सभी के घरों में बनाई जाती है। चाय के बिना तो सुबह की शुरुआत होती ही नहीं है। तो आज यानी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, जो विश्व के सभी देशों में मनाया जा रहा है। आज रोचक जानकारी के माध्यम से जानते हैं कुछ रोचक तथ्य चाय के बारे में। बाल साथियों, पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का श्रेय हमारे देश भारत को ही जाता है। ये वर्ष 2005 में नई दिल्ली में मनाया गया था, और ये इसलिए मनाया गया क्योंकि भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया गया है। और चलिए बताते हैं एक मजेदार सी जानकारी कि चाय को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं। तो बाल साथियों, इसका शुद्ध हिंदी में नाम है दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। अंग्रेजी में इसे टी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड। बाल साथियों, वैज्ञानिक भाषा में चाय के पौधे को कैमेलिया साइनेंसिस कहते हैं। ये थियेसी कुल से संबंधित है। और इस अगली जानकारी में बात करते हैं कि चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो हम बता दें, चाय की उत्पत्ति सबसे पहले चीन में हुई थी, और इसका विकास प्राचीन चीनी लोगों द्वारा ही किया गया था। बाल साथियों, एक चीनी सम्राट शेन नग

जानकारी में बात करते हैं कि चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो हम बता दें, चाय की उत्पत्ति सबसे पहले चीन में हुई थी और इसका विकास प्राचीन चीनी लोगों द्वारा ही किया गया था। बलसत में एक चीनी सम्राट शेन नग जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहीं उनका नौकर पानी उबाल रहा था। एक पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर उस पानी में गिर गए। सम्राट जड़ी बूटी विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने उस पानी का रंग बदलते देखा तो उस पेय को चखा, वो उन्हें बेहद अच्छा लगा और इस तरह चाय बनने की शुरुआत हुई और पहली चाय पी सम्राट शेन नंग ने। बालसतियो, हमारे देश में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल चाय उत्पादन में 50% से अधिक योगदान देता है। भारत की पहली चाय कंपनी थी असम कंपनी इंडिया लिमिटेड। और बालसतियो, आप सभी शायद जानते हो या ना भी जानते हो, तो आज हम आपको इस जानकारी के माध्यम से बता रहे हैं कि चाय 6 प्रकार की होती है। ब्लैक टी, लेमन टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, पुरहरा टी, उलोंग टी, येलो टी आदि। बालसतियों, भारत की प्रसिद्ध चाय है मसाला चाय, तंदूरी चाय, गुड़ की चाय, क्रीमी चाय और ईरानी चाय। बालसतियों, सबसे पहले भारत में वनस्पति वैज्ञानिक कर्नल रॉबर्ट किड ने चाय के बीजों से भारत में इसे उगाने का प्रयास किया था, लेकिन पहले भारतीय किसान थे मनीराम दीवान। तो बाल साथियों, ये तो थी रोचक जानकारी चाय के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगी। लेकिन बाल साथियों, हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि आप कम उम्र में चाय का अधिक सेवन ना करें, बल्कि दूध पिएं, जिससे हेल्दी व तंदुरुस्त रहें। तो बाल मित्रों, आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है तो अनुमति दीजिए अपनी अर्चना दीदी को।

0: अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से
1: की जानकारी देते शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। रात 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉ के नेमा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00 पर सुनिएगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10:00 सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजने को है। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य और प्रदूषण के समाधान के साथ ही ईंधन की बचत भी होती है। श्री मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरे फल भी हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुनें, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मार्कहोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मार्कहोर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है, जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मार्कहोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मार्कहोर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मार्कहोर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मार्कहोर शाकाहारी होते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए मार्कहोर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मार्कहोर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्कहोर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात

संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मारखोर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मारखोर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मारखोर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्रहित में योगदान देने पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने कहा ईंधन का बचाव करें, विदेश यात्रा से बचें, सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करें, साथ ही वोकल फॉर लोकल का पालन करें। दोस्तों इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य खपत को कम करना है। साथियों हम सभी अगर इन बातों का अनुसरण करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जैसे ईंधन का बचाव अगर होता है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम कर पाएंगे, इससे हमारा खर्चा कम होगा और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी मुद्रा विदेश में जाने से बची रहेगी। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों आज हम सोशल मीडिया

प्रक्रिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीजें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों, कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।
साथ

0: साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए, तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है, उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है, उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें, तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है, तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था।
1: मीडियम वेब और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

इश्क रिया इस फिल्म का गीत आपने सुना शफकत अमानत अली और अल्तमस फरीदी की आवाजों में। अजय गर्ग के लिखे गीत को संगीत दिया था राशिद खान ने।

अभी आपने ये गीत सुना आतिफ असलम और अल्तमस फरीदी आशीष की आवाजों में। फिल्म का नाम था बत्ती गुल मैटर चालू। शब्द रचना थी मनोज मुंतशिर की और संगीत दिया था रोचक कोहली ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और आइए अब सुनते हैं 22 डेज फिल्म का गीत।

22 डेज इस फिल्म का गीत आपने सुना अंकित तिवारी और अमृता तालुकदेर की आवाजों में। शब्द रचना थी परिवेश सिंह की और संगीत दिया था सागर लाहौरी ने। और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं वाई चीट इंडिया फिल्म का गीत अरमान मलिक की आवाज में। शब्द रचना है मनोज मुद्दशिर की और संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

वाई चीट इंडिया। ये गीत आपने अभी सुना अरमान मलिक की आवाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हम आपको बता दें हमारी केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कलाकार होंगे उदित नारायण। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे ब्रजगोपाल गुप्ता। ग्रामीण भाई सुने ग्राम सभा कार्यक्रम 7:20 पर, इसमें आप सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन। साथ ही सुनिए सौरभ भारती से उनकी वार्ता, जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव। रात 8:15 पर आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा जल जीवन मिशन। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत और रात 10 आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे धीरेन्द्र सिंह घोष थे उनकी वार्ता पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों का महत्व। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। आठ बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे धारावाहिक गीत गीता, शीर्षक होगा ज्ञान विज्ञान योग। 8:44 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9 आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम में राम कृपाल शुक्ल से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए एक ही संगीत कार्यक्रम में शंकर एहसान लॉय के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सब रंग होगा 10:05 पर। इसमें आप सुनेंगे भजन गजल और गीतों का संयोजित कार्यक्रम। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कल हमारी सांध्यकालीन सभा में 5 बजे युवा श्रोता सुने युववाणी कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे सवाल हमारे, जवाब आपके। साथ ही सुनिए आशीष कुमार यादव से उनकी वार्ता, गर्मियों में जल संरक्षण। 5:40 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर लोकधारा में कलाकार होंगे सेवक प्रसाद लोथी। ग्रामीण भाई सुनेंगे 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स और ईमेल तथा पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। सुनिए डॉ अंकुर द्विवेदी से उनकी वार्ता, गर्मी के मौसम में कुक्कुट पालन प्रबंधन कैसे करें। रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पीपुल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड, न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन

0: पुनर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या और हमारे आज के कलाकार हैं उदित नारायण।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: इस ब्रेक से पूर्व आपने उदित नारायण के स्वर में जो भजन सुना उसे लिखा था राजेश जौहरी ने, और अब सुनिए उदित नारायण के स्वर में भरत आचार्य की रचना।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: और लीजिए अब सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में रामचंद्र बगौरा का लिखा भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में सुभाष जैन अजल का लिखा हुआ भजन।

0: AIR at 90.
1: और लीजिए भजन संध्या कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में रामचंद्र बगौरा का लिखा भजन।

अभी आपने उदित नारायण के स्वर में यह भजन सुना। इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ब्रजगोपाल गुप्ता के स्वर में दादरा।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: अभी आपने दादरा सुना।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: और लीजिए अब सुनिए ब्रजगोपाल गुप्ता के स्वर में कहरवा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और आइए अब सुनते हैं ब्रजगोपाल गुप्ता के स्वर में ये लोक भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: और लीजिए, लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं ब्रज गोपाल गुप्ता के स्वर में कछियाई। ढोलक पर रघुराज सिंह और बेंजो पर जब्बार खान ने संगत की है।

मीडियम वेब और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये गुमशुदा हैं किरण विश्वकर्मा, इनकी आयु है 17 वर्ष। चेहरा सामान्य, शरीर की बनावट सामान्य, रंग साफ, आंखें सामान्य काली, बाल काले, पहनावा सामान्य है इनका। ये दिनांक 3 अप्रैल 2026 से अपने गृह ग्राम तजपुरा से लापता है। यदि इनके संबंध में किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो कृपया इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित करें। पता है राम सिंह सन ऑफ धर्मपाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम तजपुरा, थाना नदीगांव, जनपद जालौन। मोबाइल नंबर है 7458065958। एक और सूचना आपको गुमशुदा के संबंध में दी जाती है। ये गुमशुदा है तेज सिंह, ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 को 10 बजे से अपने गांव गदर कोतवाली उरई जालौन से लापता हैं। इनकी आयु है 54 वर्ष, ऊंचाई है 5 फीट 7 इंच, औसत बनावट है शरीर की, रंग गेहुआ है, चेहरा औसत है, इनके दाहिने बाजू में तिल का निशान है, बाल सफेद काले हैं, इन्होंने पैंट और शर्ट पहना हुआ है। गुमशुदगी के समय ये बादामी शर्ट और स्लेटी पैंट पहने हुए थे। इनके संबंध में यदि किसी को जानकारी मिलती है तो वो इस पते पर इसकी सूचना दे सकते हैं। पता है खचूरे लाल निरंजन, सन ऑफ मूलचंद्र, निवासी ग्राम गदर कोतवाली उरई, जिला जालौन। सूचना समाप्त हुई।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
1: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू

0: हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की ट्यूषा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
6: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निःशुल्क उपचार

0: और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकता बायपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिशकुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: पंचो राम राम। ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंच भैया ने कहा रघु भैया की राम राम पहुंच जावे। पंच भैया हरो बीरा भाई और हम हाजिर हैं अपनो मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा लेके। पंच भैया आज है कॉमन वेल्थ दिवस और भैया जो दिवस हर वर्ष 24 मई यानी आज के दिन मनाओ जात है और इधर राष्ट्रमंडल दिवस भी कहो जात है। राष्ट्रमंडल अनेक देशों के ऐसा संघ है जो समृद्धि लोकतंत्र और शांति के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल के अधिकांश कार्यों को समन्वय और क्रियान्वयन करता है और यहाँ 80 से अधिक संगठनों के नेटवर्क को समर्थन प्राप्त है। भैया हर चार साल में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को इसमें बढ़ावा दो जाता है। राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने हैं और ये जो ये राष्ट्रमंडल खेल दिवस महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और भैया आज अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस भी है जो प्रत्येक वर्ष 24 मई का मनाया जाता है। इको उद्देश्य मारखोर नामक जंगली बकरी की प्रजाति के संरक्षण और उसके पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावे के लाने मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2 मई 2024 का ई दिवस का आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। भैया मारखोर दक्षिण और मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाते हैं। यह जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाते हैं। इसकी प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। यही कारण से इसके संरक्षण का बढ़ावा देवे के लाने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाओ जात है। और पंच भैया अब कार्यक्रम आगे बढ़ा इके पहले थोड़ी रुकत है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी पंच भैया को एक बार फिर से स्वागत है। पंच भैया रो, देखो आज है इतवार और अपन इंतजार कर रहे हुए धारावाहिक अटकन चटकन को। तो पंच भैया का सुनवा रहे हैं धारावाहिक अटकन चटकन को भाग 6। अपन सुने धारावाहिक अटकन चटकन।

0: काय चटकन?
1: हाँ,
0: जो धंधो तो बड़ो साजो है।
1: कौन?
0: अरे जीव के टीप न लेवे के बहाने चाय जोन गांव चले गए।
1: हाँ।
0: दुनिया भर की गप्पे में दई उतई मन मन को अपनो खाओ पियो टीप न लई।
1: हाँ।
0: और हरा के आउटी बीरा गेल में फारी और घर चले आए।
1: बात तो बड़े पते की खई अटकन भैया। अपन ने जो लो अपन सरतारे हैं ऐसे ही मेहमानी ना करी जावे जो है सो। हैं? चलो आज कहूं दूसरे गांव में चलिए अपन। और
0: अकेले चटकन
1: हैं?
0: सबसे बड़ी हैरानी तो जेया है।
1: कैसी?
0: कि अपने परिवार में लोनिया को हल्की पतरी बिटिया अब टीपना की केलाने लेवे जेबी।
1: अरे तुम सोई अटकन भैया, कोनो दूर के गांव में जेबी जहाँ अपन का कोई नहीं जानत बिल्कुल, सो ऐसा ही लबरी लबरी दही वो कही कि हम भतीजी के लाने आया है टीप ना लेवे।
0: अच्छा, अच्छा।
1: अरे को पूछा था आजकल जो है सो।
0: अकेले चटकन कहूं को अपन खा चीन गाओ तो ये तेल अट्ठे घले तेल अट्ठे घले के भगत गेल न मिले। अब ऐसो है कि अगर कर नहीं है तो कोनो ऐसो उपाय ढूंढो कि सांप मर जाए और लठिया ना टूटे तो बात कछु बन सकत।
1: जो तो ठीक की अपन ने वो सब हम करें लेते।
0: अच्छा,
1: अकेले अटकन भैया आज मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई है।
0: काहे? कहूं दीवारी सुनत रहे का रात भर?
1: अरे दीवारी नहीं सुनत रहे, जगत रहे वो सपने देखत रहे।
0: अच्छा, जगत में देखत रहे सपने?
1: हाँ।
0: काहे के सपने देखत रहे? कहूं घल गई थी लाटरी आटरी हमारे घाई के रात के?
1: अरे अटकन भैया,
0: और
1: हम जो आ सोचत रहे कि सरपंच के वो हल्के से लड़का खा तो आदमी ब्याह के लाने फेरन लगे, अकेले अपने को चर्चा ही नहीं करवे। देखो तो अपन 30-30 साल के हो गए अकेले।
0: चटकन तुम सो
1: काय?
0: अरे ब्याह जितनी देर में होवे उतना ही साजो, नहीं तो जो जोन जितरैया दिन में नहीं दिखाती ना सो ब्याह के बाद 24 घंटा दिखाती तरैया दिन में।
1: काय अटकन भैया, आज ये घोटाई सेठ काय खान नहीं है चले आ रहे अपनी घोटाल ले जो है। देखो चले आ रहे।
0: चटकन हमें लगत कि जोन अपन ने 200 रुपये लाए हते तुलसा से।
1: अच्छा,
0: घूर के फेकवाबे के लाने सो उमे 70-72 रुपये तो खर्चा भरी हते थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: अबे 130 रुपये अपन के अगर धरी सो कहूं बेई तो नहीं मांगा भी जाऊ जो
1: है हो सकत भी आ गए।
2: काय हो रो बेटा अटकन चटकन काय हो रो? अरे अटकन चटकन हरो काय हो रो? दरवाजा लगाए आओ बैठे थे।
1: अरे सेठ जी राम राम, कछु नहीं हो रो, तुम्हारी खा देख के अठाड़े हो गए थे हमारा तो। सेठ जी आज काम भूल पड़े, तबीयत तो नोनी है पनकी के नहीं?
2: हाँ, अब तबीयत तो ऐसी आ है कि बुढ़ापो आए।
1: हाँ,
2: सो 17 रोग लगे ही रात है और तुम्हारी दोई जनन खा ढूंढता फिरते हम।
0: कहा सेठ जी, हमें और खा कया ढूंढ रहे थे, कहा पर गो ऐसो काम हम औरन से?
2: अब ये तो है के बात तुलसा नैया तुलसा।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: अरे तुम औरन की बहुत चर्चा कर रात है के बे बड़े साजे हैं, सबके काम आ उतरा बे, और ऐसो है कि बा अब सियानी नहीं हो गई है।
1: हो हो।
2: हाँ, सो उके लाने लड़का ढूंढने है लड़का।
1: ठीक है।
2: हाँ, सो तुम और है, अब देखो ऐसो है कि सहरन को जो है जाते ही रात हो।
1: हाँ,
2: हाँ। कम हमारी बिरादरी में लड़का कम टकरा जावे तो तनाग मोए इशारो कर दियो अपन।
1: हाँ, हाँ। अब सेठ जी तुलसा तो हमारी बेन ही दाखिला है, संगे पढ़ते ही रही।
0: हाँ।
1: सो हम उन्हें जल्दी से जल्दी कौन सिलसिलो जमाइयत है जो है सो।
0: और चटकन अपनों खा तो आज ही नो जाने है तो सहरे।
1: हाँ, हाँ, आज ही जाने। अकेले सेठ जी लड़का ढूंढने अपरत गांव गांव जाके। हाँ, है कि नहीं?
0: हाँ।
1: सो किराओ खर्चा तुम आओ और लड़का ढूंढवे को काम हम आओ।
2: हाँ, हाँ।

0: ठीक कही, किराया तो लगता ही है। अब जो है कौन बैलगाड़ी को जमानो आए के घुरवा घुड़ियन को जमानो आए के ऊपर बैठ के चल दियो
1: हाउ हाउ
0: और पहुंच जाओ। अब ठहरू मैं तो बूढ़ो
1: ठीक है।
0: सो मोरी तो कहूं जावे की हिम्मत ही नहीं पड़ा था। अब तुम्हारी दो ही जने हो सो मोरी लाने तो पाल लगाइयो तुम्हारी।
1: अरे सेठ जी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो इकी। पहले तनक हमारे लड़का बार ढूंढ लइए कहूं नामा जाके, फिर तुम जाके अपने बतकाओ पक्को कर लइयो। कह चटकन
0: ठीक
1: भैया,
0: कही ठीक कही। अकेले सेठ जी कछु किराओ खर्चा का पैसा टका तो दे दो हमोरन का।
1: हाँ
0: अबे तो मैं देखा था कि देख डार जो है 100 को डारे हो 100 को सुन ले लू।
1: हाउ हाउ ठीक है देव। अब तुम जाओ, काहे से हम और इनखान लारी को टेम होन जाओ हैं,
0: हाउ
1: सो शहर हम और इन जेबी।
2: जो साजो रो चटकन, चलो चढ़ो लारी में, शहर घूमा आइए।
1: बिल्कुल भैया, आओ चलो अटकन भैया। अरे भैया मई खा तो हो जाओ ना गेल में, तना खिड़की लोग तो ठाणे हो जाओ भैया। ये तो हम उन्हें गंजे ठाणे हैं, तना हम ही और हम चढ़ जान
2: दो। कूद हो जाओ भैया,
1: ये देखो तो जो बात सरक भैया तरह मई है।
2: जटकन, आज तो ये भीड़ में बड़े फंस गए अपन।
1: हाँ।
2: बैठ भी की तो बात ही कहे, पांव धरवे की गुंजास नहीं दिखाता अपन खातो।
1: अब का करिए अटकन भैया, चलने तो है ही, चलो चलिए हैं। शहर तो आऊं नहीं चाहूं, वो जी काय आगे बारे कात के पछाऊं खा जाओ।
2: हाँ।
1: और पछाऊं बारे कात के आगाऊं खा जाओ।
2: आगे गए फिर पाछे से आगे, फिर आगे से पछाऊं, जो
1: पूरी गेल भर निंगता ही फिरत रहे हम तो जो है।
2: अरे चटकन, कंडक्टर का पैसा दे दे, यू उठाड़ो मायो कूद खा।
1: अटकन भैया तुम सोई, अब पूरी गेल भर तो ना से माय होत रहे, आगाऊं से पछाऊं, पछाऊं से आगाऊं, निंगता ही नहीं फिरत रहे। तो ही बताओ अब काय के पैसा।
2: चटकन पैसा तो देना ही पड़े। लियो चटकन उतरो।
1: हाँ
2: आ वो शहर,
1: चलो
2: उतरो जल्दी से।
1: हाउ हाउ अटकन भैया, अब चलो यही नाक की सूदे चलने सीधो।
2: हाउ सीधी लग गया गेल बाजार को उठन लगा। अकेले चटकन ई दुकानन को हीरा चलने पुनखा।
1: क्या है किराने?
2: अरे कहूं कोनो सेठ को दुकान के घर कहूं मिलाइए है।
1: हाओ, अरे अटकन भैया ऊनी देख रहे तुम बोर्ड लगो लंबो सो बोर्ड, ऊ में जो का लिखो कपड़ा के थोक व्यापारी, नेचे लिखो भैया सेठ करोड़ी मल।
2: बस बस बस बस चटकन बन गाओ काम। अब देखो अकेले दुकान पे तो एक जनी बाईसी बैठी दिखाती।
1: चुका हो गई, चलो तो काहे बाई सेठ जी के घरे भी तो हो सकत।
2: हाओ हाओ आए भाई, सेठ जी हैं घरे के नैया।
3: हाओ आओ भैया, आए जा तनक भीतर सपरत खुरत हुई है। काए परदनिया तो लिया या लड़का बिटेन है कपड़ा चाहने का?
2: अरे सेठानी, हमें जी उन्ना लत्ता कछु नहीं चाहने। हमने सुनी हती कि अपन खा इस साले लड़का को ब्याह करने सो टीप ना की लाने या आए हते हमारे।
3: अरे साजे आए भैया, आओ आओ भीतर खुने करे आओ। काई द्वारे में काई ठाणी, बैठ जाओ बैठ जाओ।
1: हाउ हाउ हाउ, अब बैठने तो है ही सेठानी जू, तना पानी पंगल की हो जाए जो लो जो है।
3: हाउ हाउ बैठो, आओ मैं अब ले आई।
2: खाए चटकन?
1: हाँ भैया अटकन,
2: घर तो बढ़िया सो दिखात। उस ठाने को स्वभाव साजो लगन।
1: बिल्कुल भैया,
2: आज खेबे पीबी के जुगाड़ अच्छी दिखा चटकन जो है।
1: अब देखा जाओ अटकन भैया, हरा हरा सब हो जात है के नहीं।
2: हाओ
3: लेओ भैया हरो, चाय पियो और जो है पानी।
1: हाओ
3: तनक मनक जो नाश्ता कर लियो है।
1: हाओ हाओ हाओ सेठानी, तुम ज्यादा हैरान ना हो।
2: हाओ
3: अब देखो भैया हरो, काई काम में हैरानी काई की है, तुम और उनको तो घर आए। अब गोपी चंद को तो ब्याह इस साल हमें कर नहीं है,
1: ठीक
3: है। ऐसे घर में काम काज के लाने बहुत तो चाव नहीं है।
2: हाओ हाओ देखो, जोन दुनिया के रीत रिवाज होते ना सेठानी जी, अब ये तो सबने

0: भावनी पर थी पुलखा। अब गोपी चंद की उम्र तो कितनी हुई है सेठानी जी?
1: गोपी चंद तो 27 बरस को हुआ और देखो बीएलओ पढ़ भी लू उन्हें। अब जो है कि घर को धंधा पानी करत रात कैसे देखो नौकरी तो मिलना ही नहीं है।
2: अब जो तो साजो है सेठानी जी, घर के धंधे खा तो एक नहीं पाऊ जो है।
1: अच्छा भैया रो जो तो बताओ अपन कि अपन की बिटिया तो पढ़ी लिखी है कि नहीं?
0: हाओ हाओ दसवीं पास है बिटिया। अकेले अपन जो बताऊती कि कछु मांग आंग तो नहीं है अपनी?
1: अरे भैया हरो का की बातें कर, हाँ मांग कछु नहीं है। अब जो है कि तुम्हारी बिटिया खा कहूँ आने जाने आ है सो ओई खा एक फटफटिया भर दे दियो, हमें सो कछु नहीं चाहने।
2: अब जो तो हो जे है सेठानी जू, अकेले और कछु तो ना मांग हो बाद में?
1: हाँ अब जो यह है के उ बहु के लाने पर वे खाऊ का कहा हम तो जानते ही नहीं है। पर डबल रोटी खाई नहीं कही जा तू को ना। अच्छा
0: डबल बेड की बात कर रही
1: है, ऊपर दे दे देखो हमें तो कछु नहीं चाहूने। और कहे कि बिटिया खां घर से बिना गानो गुड़िया के तो अपन विदा कर होना है, कम से कम 10-20 तोला सोनो एक आध किलो चांदी तो कम से कम दे होई है। देखो सब वही बिटिया के लाने आए, मोई कछु नहीं चाहूने।
0: लफड़ा है चटकर भैया।
2: बिल्कुल है भैया। सेठानी बिलात हो रो तुम जो बतकाओ भाई समझ में नहीं आ रो, ये तो बड़ा मुश्किल है सेठ जी खा दे पाबू।
1: अब का मुश्किल है भैया, जो कछु दे हो सो अपनी बिटिया खा का मुए का चाहूने।
0: और कछु हुए सेठानी जू तब और भाई बता दो, बाद में न हुए कोनो किलकिल।
1: देखो भैया रो अब इमे किलकिल की का बात है, है? बैठवे उठवे सोफा हवा के लाने कूलर उलर का कहा है। और देखो बासन भाड़े जो तो सबई को देत है, है? जा तो कछु केवे बारी बात है ही नहीं। और आज कल नौकरी तो लगने नहीं है सो देखो लड़का बहु मारी मारी फिरे, धंधे पानी के लाने लाख 2 लाख रुपया बस दे दियो और मुंह तो देखो कछु नहीं चाहूने। और कहे कि तुम्हारी बिटिया देखो हमेशा सुख से रहे, मुंह का करने
0: अपन माय काती जातनी के मुंह कछु नहीं चाहने, मुंह कछु नहीं चाहने। वो हरा हरा तुमने 4-5 लाख को सामान गिनवा दो जो काए।
2: हमें लगा सेठानी जी अपन तो ही बड़ी सियानी हो, कहे तुम लड़का मोला बेच नहीं और जो तो बताओ के कोहू के दय से तुम काहे सुखी हो जे हो?
0: हाँ?
2: अरे बिटिया बारो तो घर गृहस्थी बेच के दे है, वो भीख मांगत फिर है और तुम फटफटिया पे घूमी।
1: देखो भैया ऐसी न कहो, मुए नहीं चाहना जो सब तुम्हारी बिटिया के लाने।
0: अरे सेठानी जी जब वो बिटिया बारो तुम्हार रिश्तेदार बनाई जे है और इतो कर्जी हो जे तो तुम्हें भगवान लो माफ न करे राम धई। और यही से तुम्हारा लड़का हमें लगत कह चटकन 27 बरस को होगा कोनिया ब्याह खां वेलो।
2: यही में तो मंगाउतियां हैं सेठानी खूब। वही एक बात और बताएं सेठानी जी, दहेज प्रथा के कानून में बिदजे हो तुम, कानून में बिलोरई पर जे है जो है जो ब्याह में।
1: देखो भैया हरो तुम्हारे ब्याह कर भी आए कि अट्टपट्ट को कानून बघार भी आए।
2: सेठानी अबे तो हम समझाईता है और अगर ना मान हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर सोई हम लगवा दे भी तुम्हें।
1: कोर्ट कचहरी? देखो भैया हरो अपने घर जाओ, मोए नहीं करने अपने लड़का को ब्याह।
0: सेठानी जी अब ब्याह तो अपन खा करने ही पर
2: है,
0: हाँ नहीं तर अब बे हो तुम्हारी रिपोर्ट चुपचाप टीप न दे दू और दहेज को ना बिल्कुल भुला दू मन से, एक ढेला नहीं मिलने ढेला। अब तुम काय खा तैयार हो जो बताओ, कोर्ट कचहरी खा के ब्याह खा लड़का के?
2: हाँ अब सूदी सूदी हो जान दो बतकाओ बिल्कुल।
0: हाँ।
2: बिटिया साजी मिल रही पढ़ी लिखी है और फिर जो को अपनी बिटिया दे सेठानी जू सो जिंदगी भर के लाने तुम्हारो नहीं बन जात, अब वो तो तुम्हारा रिश्तेदार ही है, अब तुम्हें का चाहने जो है सो?
1: अब बेटा हरो जैसो तुमोर जानो, तुमोरन ने तो साचो मोरी आँखें खोल दी, को के दय से काय को धन जरूरत का
2: ये सही है सेठानी
1: जो ब्याह जरूर हो के ही रहे।
0: हाँ।
2: अब सेठानी जी जय हो।
0: हाँ।

0: अबे अपन सुन रहे थे धारावाहिक अटकन चटकन को भाग छः। और पंच भैया रो अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हो रहा है और अपन देख रहे हैं कि भैया आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। और ये गर्मी के मौसम में अगर पंच भैया ने अपने स्वास्थ्य में तनसी लापरवाही करी तो निश्चित रूप से भैया भी बीमार हो सकते हैं। तो हमारा पंच भैया से यही कह वो है कि पंच भैया गर्मी के मौसम में मौसमी फल जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। कैसे मौसमी फल सेहत के लाने वरदान है जे भैया हमें दीर्घकालिक बीमारियों से लड़ने में बेहद फायदेमंद होते हैं। मधुमेह हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से हमें स्वस्थ और सेहतमंद रखते हैं। देखो भैया फल हमेशा खाली पेट या भोजन के कम 2 घंटे बाद खाओ चाहिए। गर्मियों के मौसम में मौसमी फलन को सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करो चाहिए। मौसमी फल फायदेमंद तो होते हैं साथ में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं और हमें रोगन से लड़ने में प्रभावी होते हैं। और पंच भैया देखो बहुत तेज लू चल रही है तो पंच भैया से यही क्या वो है कि पर्याप्त पानी पिए, नारियल पानी, मठा, नींबू पानी जैसे तरल पदार्थन का सेवन करें। दोपहर भैया 11 से 4 बजे के बीच में अगर संभव हो तो सीधी धूप में जावे से पंच भैया बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, मौसमी फलों को सेवन करें। खीरा, कद्दू, खरबूज, लौकी, टमाटर जैसे शीतल और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ खाएं। शिशु और बच्चों को बचाव करें। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और खुले में काम करने वाले श्रमिक और हृदय रोगी इस समय ज़्यादा धूप में जावे से बचें। लू के संकेत में अगर लू लगे भैया तो एक कछु अपन का बता दें कि जैसे चक्कर आवो, सिर दर्द, मतली, शरीर को अत्यधिक गर्म होवो, निर्जरीकरण या मानसिक स्थिति में बदलाव या बेहोशी के दौरे पड़वो लू के संकेत हैं। और भैया अगर अपने कोनो भी पंच भैया का इमें कोनो भी लक्षण नजर आए तो भैया तुरंत पास के अस्पताल में जाएं और तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। भैया स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लू से अपनों बचाव जरूर करें। और अपन भैया सुनवा रहे हैं कि वार्ता जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव, वार्ताकार हैं सौरभ भारती। अपन सुने पन सुने जा वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आज की हमारी वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव। किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि और मौसम का संबंध बहुत गहरा है। किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है और उसकी मेहनत का परिणाम काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। यदि समय पर वर्षा हो जाए, तापमान संतुलित रहे और प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल हों तो पैदावार अच्छी रहती है, लेकिन जब मौसम असंतुलित हो जाता है तो खेती पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, कभी अचानक भारी वर्षा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि फसलें नष्ट कर देती हैं। सर्दियां कम हो रही हैं और गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है। यह सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। आज की इस वार्ता में हम विस्तार से समझेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, फसलों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है। जब किसी क्षेत्र के तापमान, वर्षा और हवा, आर्द्रता, मौसम के सामान्य स्वरूप में लंबे समय तक परिवर्तन होने लगे तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब मौसम अपने सामान्य व्यवहार से बदलने लगे तो वह जलवायु परिवर्तन कहलाता है। पहले किसान मौसम का अनुमान आसानी से लगा लेते थे। उन्हें पता होता था कि कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी। लेकिन आज का मौसम अनिश्चित हो गया है। कभी जून में बारिश नहीं होती और अचानक एक दो दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है। बदलती जलवायु का प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण, फर्स्ट, वनों की कटाई। पेड़ पौधे और वातावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन तेजी से जंगलों की कटाई होने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। यह गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण। कारखानों, वाहनों और मशीनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे निकलने वाली गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। इसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग। कोयला, पेट्रोल, डीजल का अधिक उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण है। आज बिजली उत्पादन, उद्योग और परिवहन में इसका अत्यधिक उपयोग हो रहा है। रासायनिक खेती, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों

का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। जलवायु परिवर्तन का फसलों पर प्रभाव। अब हम विस्तार से समझेंगे कि बदलती जलवायु का हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला, तापमान में वृद्धि और उसका प्रभाव। किसान भाइयों, प्रत्येक फसल के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यक होता है। यदि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए तो फसल की वृद्धि और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। गेहूं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गेहूं की फसल को ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन सर्दियां कम हो रही हैं और मार्च अप्रैल में तापमान तेजी से बढ़ जाता है। इससे दाने ठीक से नहीं बढ़ते, दाने छोटे रह जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। धान पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। धान की फसल में अधिक तापमान फूल बनने और दाना बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन का सोयाबीन पर प्रभाव। यदि फूल आने के समय तापमान बहुत अधिक हो जाए तो फलियां झड़ने लगती हैं। चना पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। मार्च में अधिक गर्मी पड़ने से चने की उपज पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सब्जियों पर प्रभाव। टमाटर, मटर, गोभी जैसी फसलें अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती हैं। इससे गुणवत्ता और उत्पादन दोनों घट जाते हैं। वर्षा का असंतुलन। पहले मानसून लगभग निश्चित समय पर आता था, लेकिन अब बारिश का समय और मात्रा दोनों बदल गए हैं। अधिक वर्षा के नुकसान। जब बहुत अधिक बारिश होती है तो खेतों में जलभराव हो जाता है, पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं, मिट्टी से पोषक तत्व बह जाते हैं, फसलें गिर जाती हैं। धान और सोयाबीन और सब्जियों में इसका अधिक प्रभाव देखा जाता है। कम वर्षा के नुकसान। यदि बारिश कम हो, बीज अंकुरण प्रभावित होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। सूखा और बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ दोनों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सूखे के प्रभाव से मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, जिससे जो है पौधों को पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, पौधे सूख जाते हैं, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। बाढ़ का प्रभाव। खेतों में मिट्टी का कटाव, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, मिट्टी के पोषक तत्व निकल जाते हैं। कीट एवं रोगों का बढ़ता प्रकोप। बदलते मौसम ने कीटों और रोगों की संख्या बढ़ा दी है। दिन प्रतिदिन नए नए रोग और बीमारियां फसलों में लग रही हैं। उच्च तापमान और नमी कई रोगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। उदाहरण, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी, झुलसा रोग, फफूंद जनित रोग, अनेकों रोग दिन प्रतिदिन जो है नई नई फसलों में नए नए रोग लगते जा रहे हैं। अब किसानों को अधिक दवाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे कि खेती की लागत बढ़ रही है और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे किसानों के जीवन पे जो है नई नई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव। अत्यधिक वर्षा और तापमान वृद्धि मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। मिट्टी के जैविक तत्व कम हो रहे हैं, मिट्टी कठोर होती जा रही है, मिट्टी का जिससे स्ट्रक्चर सही नहीं हो पाता, उसमें पानी और पोषक तत्व रोके रखने की क्षमता कम हो जाती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है। फसल उत्पादन में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख फसलों की उत्पादकता घट रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं, धान, मक्का, दालें आदि की उपज में दिन पर दिन जो है कमी होती जा रही है। इसकी उपज आने वाली वर्षों में और प्रभावित हो सकती हैं, यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो। किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। जब उत्पादन कम होता है तब लागत बढ़ जाती है, तो किसानों की आय घट जाती है। बार बार फसल खराब होने से किसानों पर कर्ज बढ़ता है, किसान आर्थिक तनाव की ओर बढ़ जाते हैं, जीवन स्तर प्रभावित होता है। यहाँ तक कि कुछ किसान खेती छोड़ने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपाय। प्रश्न यह है कि किसान इसे कैसे बच सकते हैं? तो पहला पॉइंट यह है कि किसान जलवायु परिवर्तन से कैसे बचे। जल संरक्षण तकनीकें अपनाएं। किसान भाइयों, आप जो है जल संरक्षण तकनीकें जैसे कि ड्रिप सिंचाई हो गया, स्प्रिंकलर सिंचाई हो गया, वर्षा जल संचयन हो गया, इससे पानी की बचत होती है। खेती भी किसान भाई अपना सकते हैं। एक ही फसल पर निर्भर ना रहें, अलग अलग फसलें लगाने से जोखिम कम हो जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। सूखा एवं रोग प्रतिरोधी किस्में अपनाएं। ऐसी किस्मों का चयन करें जो बदलते मौसम को सहन कर सके और जिसका जो है वाटर अवेलेबिलिटी कम हो। सूखा सहनशीलता वाली किस्में अपनाएं। जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और जल धारण क्षमता सुधारते हैं। किसान भाई जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कृषि वानिकी को भी अपना सकते हैं। पेड़ लगाने से तापमान नियंत्रित रहता है, मिट्टी का संरक्षण हो जाता है, पर्यावरण संतुलित रहता है। मौसम आधारित कृषि करें। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कृषि कार्य करें। आज मोबाइल और कृषि ऐप के माध्यम से मौसम की जानकारी आसानी से मिल जाती है कि कब बारिश होने वाली है, कब जो है सूखा पड़ने वाला है, उस हिसाब से बुआई, सिंचाई, कटाई करें। सरकार और वैज्ञानिकों की भूमिका। सरकार किसानों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे कि फसल बीमा

0: योजना, फसल बीमा योजना का उपयोग करके जो है किसान अपनी जो है फसलों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएं, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं, मौसम पूर्वानुमान सेवाएं, किसानों को इन योजनाओं का लाभ अवश्य लेना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, इस पे भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे जो है हम मृदा में जो है पौधों की उपलब्धता पूरी करा सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन आज कृषि के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन यदि किसान वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं, जल संरक्षण करें, बहुफसली खेती करें, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें, तो इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में मिलकर कार्य करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाई जा सके।
1: पंच भैया अब सुन रहे थे वार्ता जलवायु परिवर्तन को फसलों पर प्रभाव, वार्ता का रहते सौरभ भारती। पंच भैया रो अब समय हो रो आज की सीख को विषय है जैसी करनी उसी भरनी वैसी पार उतरनी। कौजात भैया के जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान का अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलत है, अच्छे कर्मों को अच्छो और बुरी को बुरो फल मिलत है। और भैया जे कहूं नहीं मनुष्य खाए ऐत ही भुगतने पड़ता है, अतः अपने पंच भैया से यही कह है कि पंच भैया अच्छे और नौने नौने कार्य करें, हमेशा दीन दुखियों की मदद करें, जो भी अपने हैं उनके संग भी सकारात्मक व्यवहार रखें, लोगों के प्रति अपने आसपास के लोग हैं उनके प्रति स्नेह को भाव रखें, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेहत को ख्याल रखें और उनको अगर कोई परेशानी है तो सुबह शाम उनके पास बैठ के उनको आशीर्वाद जरूर लें, कैसे बुजुर्गों को आशीर्वाद दिया पंचमहीन की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। और भैया अब पंचमियन सुनवा रहा है एक चेतावनी बाल कृष्ण कुशवाहा की आवाज में, तो पंच सुनाया जाए चेतावनी।

देखो पंच भैया, अब अपन सुन रहे थे जो बाल कृष्ण कुशवाहा की आवाज में, अच्छी चेतावनी। और पंच भैया, गर्मी के मौसम है भैया, तो वाहन भले सोच समझ के चलाएं, साथ में भैया वाहन चलाते समय मोबाइल को प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाओ भाई, एक सुनवा रहे हैं हास्य गीत अशोक कुमार दुबे की आवाज में, तो पंच सुने जो हास्य गीत।

देखो पंच भैया, अब सुन रहे थे जो अपन हास्य लोकगीत अशोक कुमार दुबे की आवाज में और हो रही चल रही की वीरा पंचन का बता दिया जाए कल के कार्यक्रम। कल सुने पंच रमतुला कार्यक्रम, प्रस्तुति हुई है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। पंच सुने वार्ता, गर्मी के मौसम में कुक्कुट पालन प्रबंधन कैसे करें। वार्ता कर रही है डॉक्टर अंकुर द्विवेदी। आज की सीख में पंच सुने, जो जामे जाने नहीं काय खो जूझन जाए, मूल काय में फंस गई तो पूछ को लांटे खाए। और हुई है पंचन से चर्चा, तो अब लिया है विदा। तो पंचो राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी

0: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उससे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है। वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गांव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है। इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार यह हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक एनविसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल।

0: ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही हैं चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 20 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा और इस वर्ष विकसित भारत भारत जीराम जी में अगर आप देखें सुनो जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार

0: किया है, तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन की एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा,

0: surgió me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी

0: Surgiome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
3: अच्छा हो गया नहीं तो?
4: अब भी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेज करिए सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
3: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। भले श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह।
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JGM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियां, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा। और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग

0: पानी को सहेज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
1: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है, वहाँ जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
2: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गांव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है, तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
3: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को, सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
4: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपए आ गए हैं। वार्ड क्रमांक 2 में 700

0: 90 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपए आ गए हैं।
1: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जलकर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दे इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गांवों में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुंचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहां पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता, हमारे टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले। और अब पानी हो गया तो नल चालू करो, पानी भरो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: मीडियम वेब और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

रूप तेरा मस्ताना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। असद भोपाली के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब सुनते हैं।

अभी आपने ये गीत सुना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर।

कुमार की, शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत दिया था खयाम ने। और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं धनवान फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। साहिर के लिखे गीत को संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में

0: भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों कारावास की सजा पूरी कर

0: चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP

सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीन

कलाकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आई

0: शिक्षक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबली प्रसंग करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by प्रशांत दे रॉय।
0: पंडित हरिशंकर भट्ट दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाय पंडित हर शंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से

0: एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें

0: विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months, diversified